मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी उदयपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 11 जून 2026। इस समय सुबह के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा अब शुरू होती है।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी उदयपुर। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।

0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रातःकालीन सभा का आइए शुभ आरंभ करती हैं, ईश्वर का सुमिरन करते हैं, सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत वंदना। जीवन में एक निरंतर चलते रहना, ये हमारा सबसे पहला धर्म है, और सच के लिए काम करते रहना, ये हमारा परम धर्म है।

अश्विनी भिड़ेज की आवाज़ में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी। मौन का इससे अधिक हितकर रूप कुछ नहीं हो सकता कि वे झूठे आरोप और मानहानि का उत्तर बन जाए। जो सही जीवन जीता है और सही है, उसके मौन में दूसरे के शब्दों से अधिक शक्ति होती है।

पंडित भीमसेन जोशी की आवाज़ में अभी आपने ये भक्ति गीत को सुना। वाणी का वर्चस्व रजत है किंतु मौन कंचन है ना। मौन ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों का आभूषण समान बन जाता है और मौन सर्वोत्तम भाषण भी होता है। आइए सुनते हैं अगली भक्ति रचना।

जगजीत सिंह और साथियों की आवाजों में आपने ये भक्ति रचना सुनी। प्रेम हृदय के समस्त सद्भावों का शांत, स्थिर और उद्गारहीन समावेश है। प्रेम बलिदान है, आत्मत्याग है, ममत्व का विस्मरण है। प्रेम स्वर्गीय शक्ति का जादू है। इसमें पढ़कर राक्षस भी जैसे देवता से बन जाते हैं। आइए सुनते हैं अगली भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 6:35 हुए हैं। अब आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आपको देते हैं जानकारी।

सवेरे 6:40 पर प्रस्तुत किया जाएगा श्री रामचरित मानस गान। 6:50 पर खेती में आज का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे जून माह में खेती के कार्य। सवेरे 8:30 पर नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा। दोनों ही चैनल पर आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं, आकाशवाणी उदयपुर और FM रेडियो लेक्सरी चैनल पर। सवेरे 9:30 पर बच्चों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा।

सुबह 9:55 से रामगढ़ जैसलमेर में 20 किलोवाट ट्रांसमीटर के उद्घाटन समारोह का सजीव प्रसारण आप सुन सकेंगे। दिन में 1:05 पर सहेली यारी बाड़ी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दिन में 2:10 पर विकास चर्चा में आज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की जानकारी साझा की जाएगी। किसान परिवार सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। समय रहेगा दिन के 2:30 का। सायंकालीन सभा में शाम 5 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम युववाणी। शाम 7 खेती और घर का प्रसारण किया जाएगा।

आज की सभा में आप फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुन सकेंगे सुबह 7 बजे, दिन में 12 बजे। एक बार फिर दिन में 1:45 पर फिल्म संगीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचेगा। शाम के सभा में 6:05 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद रात्रि की सभा में ले सकेंगे 8:45 पर और 9:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सवेरे 7:45 पर, दिन की सभा में 11:30 पर और रात्रि सभा में 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। ये थी जानकारी हमारी आज की दोनों सभाओं में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की।

यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में कुछ ही पलों में 6:40 होने को है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। संगीत का निर्देशन सतीश भाटिया ने किया है। गायक कलाकार हैं हरिहरन। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 106।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाईं, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने

राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

श्री रामचरितमानस गान अभी आपने सुना। सतीश भाटिया ने संगीत से इसे सजाया और गायक कलाकार रहे हरिहरन। हम आकाशवाणी उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं और अब हमारे किसान परिवार सुनेंगे जून में खेती के कार्य के बारे में कार्यक्रम खेती में आज। आइए सुनते हैं।

कपास और जूट रे लारे लारे चारा फसला जिसरे की मक्का ज्वार बाजरा लोबिया ग्वार और लूसर न अणा सब फसला री बुवाई रे वास्ते प्रबंधन करिया जावे। मानसून आवारे बाद तैयार पौध ने जुलाई रे महीना में रोपाई करी जावे। अंडे वास्ते उन्नत शस्य क्रिया ने अपनानो चावे। जणियु कहिए वत्ती उत्पादन अपने मिल सके। अणी महीना में खेती बाड़ी रे काम रो उचित प्रकार पूर्ण करवारे वास्ते मौसम आधारित कृषि परामर्श भी अपने ध्यान में रखना चाहे। धान री नर्सरी री वावणी जी किसान भाई करनो चाहे भी देखो मिट्टी चयन और क्यारियां री तैयारी कर लेवे। धान री खेती रे वास्ते हाउस जाल धारण क्षमता वाली जो चिकनी या मटियार मिट्टी है जंडो की पीएच मान 6.5 से 8.5 तक वेणो चावे यो हाउ रेवे। स्वस्थ और रोग मुक्त पौध तैयार करवारे वास्ते उचित जल निकासी री उच्च पोषक तत्वयुक्त दोमट मिट्टी पाणत्रे स्त्रोत्रे भरे नर्सरी रो आपणे चयन कर लेनो है। वावणी रे एक महीना पहली नर्सरी री तैयारी कर सका। नर्सरी क्षेत्र ने गर्मिया में हाउ तरेऊं 3 से 4 बार हल नू जुताई करने खेत ने खाली छोड़वाऊं। मिट्टी संबंधित जो रोग है वणा में काफी कमी आवे और नर्सरी क्षेत्र ने पानी भरने पले वो लगाया केड़े पानी री पतली परत राखवाऊं। खेत ने एक दिन तक रे वास्ते इसे छोड़ देनो चावे। किसान भाया क्यारिया री उचित देखभाल रे वास्ते 1.5 से 2 मीटर चौड़ाई या पछे 8 से 10 मीटर लंबाई राखनी चावे। कई किस्मा रे वास्ते नर्सरी मनाता टेम पे विभिन्न प्रजातियां री मिलावट बचवारे वास्ते 2 प्रजातियां रे बीच नर्सरी क्यारिया रो फासलो 1.5 से 2 मीटर तक वेणो चावे। मृदा जनित रोग और कीड़ा रे नियंत्रण रे वास्ते ट्राइकोडर्मा ब्यूवेरिया बेसेनिया जैसा कीटनाशी है वंडो 2.5 से 3 किलोग्राम मात्रा और क्लोरोपोरिफास 20% ईसी 2.5 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर री दर उपयोग कर लेनो चावे। अणियु बीज और मृदा जनित रोग बचाव वेगा और बीज रो जमाव प्रति भी बढ़ जाएगा। बीज रो चयन सावधानी पूर्वक किसान भाया करनो चावे। अंडे वास्ते आधारी और प्रमाणित बीजा रोज उपयोग करनो चावे। अण में पूर्ण जन्मा पंक्ति प्रजातियारी शुद्धता और स्वस्थ व्यवहारी प्रामाणिकता वेवे। सामान्यतः मोटा दाना वाली किस्मा रे वास्ते 30 से 35 किलोग्राम और बासमती रे वास्ते 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त रेवे। एक हेक्टेयर रोपाई रे वास्ते 500 वर्ग मीटर पौध क्षेत्र पर्याप्त वेवे है। बीज फैलवा वाला फफूंद और जीवाणु जनित रोग नियंत्रण रे वास्ते 5 ग्राम इमिसान या पचे 10 ग्राम बाविस्टिन और 2.5 ग्राम पोसामाइसिन या पचे 1 ग्राम स्टेटोसाइक्लिन या पचे 2.5 ग्राम एग्रीमाइसिन 10 लीटर पानी में घोल लेनो है। अंडे केड़े 20 से 25 किलोग्राम छाटिया तका जो बीज है वणा ने 25 लीटर घोल में डुबोई ने 24 घंटा रे वास्ते पानी में भिगोई ने राख देनो चावे और 24 से 36 घंटा तक जमा वेवा देनो चावे। बीच बीच में पानी रो छिड़काव करतो रहनो चावे। अंडे बाद पानी री पतली सतह रे लारे संतृप्त रो या पछे गारा वाली स्थिति वणाए राखनी चावे। नर्सरी क्यारियां रे ऊपर अंकुरित बीजा ने समान रूप छिड़काव कर देनो चावे। जब तक कि नव पौध हरी नहीं वे जावे पक्षियां रे वेवा वाला नुकसान बचावा रे वास्ते विशेष सावधानी किसान भाई आपाने बरतनी है और शुरू रा 2-3 दना में अंकुरित बीजा ने पुआलू ढक्या तका राखनो है। अणी उपचार जड़ गलन जोंका और पत्ती या झुलसा रोग है अणे रोगा रे नियंत्रण में सहायता मिलेगा। विस्तृत वावणी रो टेम किस्मा रे ऊपर निर्भर करे परंतु 15 से 25 जून तक रे बच्चे वावणी रो उपयुक्त टाइम है सा। पोषक तत्व प्रबंधन री बात करा तो नव पौधरी हाउ स्वस्थ और ओजपूर्ण पर्याप्त बढ़तवार वास्ते पोषण मिलनो जरूरी है। अंडे वास्ते 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 10 क्विंटल सड़ी तकी गोबर री खाद 10 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट और 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट जुताई रे पहला मिट्टी में हाउतरम मिले देनो है। वंडे केड़े वामनी करनी है। अंडे 10 से 12 दिना रे बाद अगर पौध रो रंग हल्को पीलो वे जावे तो 1 सप्ताह रे अंतराल पे 2 दान 10 किलोग्राम यूरिया प्रति 1000 मीटर री दर मिट्टी रे ऊपरी सतह पे छिड़काव कर देनो है जने पौधारी बढ़तवार हावेगा। खरपतवार प्रबंधन री बात करा तो वामणी रे 1 से 2 दना रे बाद पायराजोल सल्फ्यूरोन 250 ग्राम प्रति हेक्टर री दर पौध निकलवारे पहली छिड़काव कर देनो है। अंडे लिए शाक नासीर रेत में 10 से 15 किलोग्राम प्रति 1000 मीटर मिलाई ने नर्सरी क्यारियां पे एक समान रूप फैलाई देनो है और हल्को पानी 1 से 2 सेंटीमीटर क्यारिया में भरियो रेवा देनो है। अणियु खरपतवार नासी एक समान क्यारिया में फैल जाएगा। रोपाई री बात करा तो
मध्यम और देर

खेती में आज कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाया ने नीता को ठरी रो राम राम सा। किसान भाया आज बात करंगा अणी महीना आपाने खेती बाड़ी रा कसा कसा काम करना है। जून रे महीना में खेती बाड़ी रे क्षेत्र में खरीफ फसला री वावनी री तैयारियां शुरू हो जावे। जून में धान री नर्सरी तैयार करनो, चारा फसला और रेशेदार फसला री वावनी भी करी जावे। बारानी क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, मडुआ रे लारे लारे तिलहनी फसला जिसरे की सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और अरंडी रेशेदार फसला जिसरे की

खेती में आज अभी आपने सुना ये कार्यक्रम जिसमें आपने सुना कि जून माह में खेती के कौन से कार्य हो सकते हैं। आप है आकाशवाणी उदयपुर केंद्र के साथ मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7 बज चुके हैं और ये वक्त होता है कि हम आपको रोज़ाना लिए चलते हैं फिल्म संगीत के सफ़र पर। कुछ सदाबहार गीत आप तक पहुँचाते हैं जो हमारे साथ जिंदगी भर कहीं ना कहीं साथ चलते रहते हैं। कुछ ऐसे ही गीत 90 के दशक के लेकर आज इस कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं

देते थे। कुछ ऐसे ही गीत लेकर आज सदाबहार नगमे आप तक पहुंच रहा है। पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म जिगर से। आवाज से है अभिजीत और साधना सरगम की।

90s का वो दौर जब गीत संगीत इतने खूबसूरत हुआ करते थे कि भले ही फिल्म हमने देखी हो या ना देखी हो, लेकिन गीत हमें कहीं ना कहीं याद हो ही जाते थे। और उन गीतों के साथ हम कई बार अंताक्षरी या इधर गाने गुनगुनाने में इन गीतों को हम याद कर ही लेते।

नदीम श्रवण का संगीत और अभिजीत साधना सरंगम की आवाज़ों में अभी आपने ये अनजान का लिखा गाना सुना फिल्म जिगर से। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे, इस कार्यक्रम में अगला नगमा जिसे आवाज़ दी है कुमार शानू और साथियों ने।

आनंद बख्शी का लिखा ये गीत और अनु मलिक के संगीत से सजा ये गाना आपने सुना फिल्म चमत्कार से। आवाज़ें थी कुमार शानू और अलका याग्निक की।

नदीम श्रवण के संगीत से सजा और समीर का लिखा ये गाना आपने सुना फिल्म दीवाना से। आवाज़ दी थी विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

सपने साजन के ये फिल्म से आपने ये गाना सुना। आवाज़ें थी कुमार शानू की और अलका याग्निक की, नदीम श्रवण का ये संगीत था और इसे लिखा समीर ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:45 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं चंद गज़ल की पेशकश।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में अभी आपने ये नज़्म सुनी। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये अगली पेशकश।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली समाचारों के लिए।
1: बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
4: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में

0: शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
3: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां

0: उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
1: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
2: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
6: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक

0: ग्रुप में चार चार टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रूपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
4: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the national vision on inclusive human development

0: जिंदगी कोई रिकॉर्ड टेप की तरह कहाँ होती है जिसे हम रिवाइंड कर सके, ये तो एक सजीव कार्यक्रम जैसा है, यानी जिसे हम अपने तरीके से लाइव शो कहते हैं। इसलिए रेडियो की तरह ही अपने वाइब को पॉजिटिव ट्यून इन कीजिए और पूरे वॉल्यूम में अपने दिन को नए उजालों से भर दीजिए।
1: जी हाँ, इन्हीं खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं। और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनीता और मेरे साथ है
0: क्षिति प्रणाम।
1: तो कीजिए कबूल हमारा प्यार भरा नमस्कार। और नमस्कार के साथ ही क्षिति अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि आज ग्रीन एंड गेटअवे गुरुवार में क्या है खास।
0: सबसे पहले प्रातः ब्रीफ के अंतर्गत स्थानीय खबरों के साथ ही आज हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जयंती पर उन्हें याद करेंगे।

0: साथ ही 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की करेंगे चर्चा। पर्यावरण संवाद में बात करेंगे ग्रीन बिल्डिंग और ऊर्जा संरक्षण की,
1: और उसके साथ ही यात्रा संवाद में हम पास के पर्यटन स्थल में बात करेंगे, बातों के जरिए अपने श्रोताओं को घुमाएंगे परशुराम महादेव, और योगासन के साथ सतर्कता बढ़ते जागरूकता में इस विषय पर बात करेंगे।
0: तो करते हैं इस कार्यक्रम का आगाज एक गीत के साथ।

0: चलिए ग्रीन गेट अवे गुरुवार में अब बात करते हैं प्रातः ब्रीफ की। बच्चे खेल खेल में सबसे बेहतर सीखते हैं और खेल केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि जीवन की सीख है। ये बात सही है कि खेलना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही होते हैं और इसी उद्देश्य के साथ हर साल 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 140 से अधिक देशों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके तहत हर साल 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया।
1: खेल बच्चों को संघर्ष, विस्थापन और आघात के बीच सुरक्षा और अमान्यता का एहसास दिलाता है, जिससे उन्हें भय, चिंता और अनिश्चितता से निपटने में मदद मिलती है। ये बच्चों को सिखाती है खुद को अभिव्यक्त करना और ये मौका देती है शरीर को लचीलापन देने का, साथ ही भावनात्मक जो संतुलन है उसे भी बहाल करता है। बच्चे खेलों से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे समस्या का समाधान करना, भावनाओं का नियंत्रण करना और सहयोग की भावना को जगाना। खेल जो स्पर्धाएं होती है उसके माध्यम से भी बच्चे बहुत सारे कौशल सीखते हैं। मेगा खेल आयोजनों की मेज़बानी हमारे शहर में उदयपुर में भी की गई है। जैसे देखें, हमारे शहर को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत जूडो के लिए मेज़बानी का गौरव प्राप्त हुआ है। दिव्यांग खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए उदयपुर में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप का सफल आयोजन भी किया जा चुका है और महाराणा प्रताप खेलगांव के एस्ट्रोटर्फ मैदान और विभिन्न मैदानों पर नेशनल स्कूल गेम्स हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई जिसमें देश भर के टीमों ने हिस्सा लिया।
0: और हर साल इस दिवस को एक थीम के साथ भी मनाया जाता है, तो 2026 की थीम है कि हर साल इस दिवस जो 2026 की थीम है वो है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। यह दिवस सभी को याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेलों पर ही आधारित होता है। और इसके साथ ही श्रोताओं तक पहुंचाते हैं स्थानीय खबरें। तो देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार देर रात पोर्टल बंद होने के साथ ही पूरी हो गई। इस साल तीर्थ यात्रा को लेकर बुजुर्गों में भारी उत्साह देखने को मिला है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसके मुकाबले 3 गुना ज्यादा यात्रियों ने आवेदन किया है। सबसे ज्यादा रुझान हवाई यात्रा को लेकर दिखा है। योजना के तहत 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा से पशुपति नाथ मंदिर ले जाया जाएगा और इसके लिए 1,05,201 यात्रियों ने अपनी प्राथमिकता दर्ज कराई है।
1: और आगे देखें तो हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किए जा रहे हैं महाराणा प्रताप जयंती एवं हल्दीघाटी विजय सार्ध चतुर्शती उत्सव के तहत मेवाड़ वागड़ अंचल में महाराणा प्रताप के शौर्य गाथा घर घर पहुंचाई जा रही है। प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ के कार्यकर्ता गांव गांव और शहरों में पहुंचकर हल्दीघाटी विजय की गौरव गाथा के पत्रक वितरित कर रहे हैं तथा लोगों को 17 जून को आयोजित होने वाली विशाल राष्ट्र चेतना संकल्प सभा में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रामीण शहर जो शहरी सेवा शिविर है वो महाअभियान के रूप में 12 जून से शुरू की जाएगी। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेश भर में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर लगाए जाएंगे। महाअभियान में सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक ये कैंप होंगे।

इतिहास के उस पन्ने को पलटने का दिन है जिसमें माँ भारती के वीर सपूत महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की अंग्रेजों की जो हुकूमत थी उसको करारी टक्कर देने की गौरव गाथा को लिखा गया था। किसी ने क्या खूब लिखा है, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। राम प्रसाद बिस्मिल, ये नाम हम सब जानते हैं, आज़ादी के दीवाने वो कहे गए। उनकी ख्वाहिश थी कि हंसते हंसते वे इस देश के लिए जान दें

0: उसी तरह से थे और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद उनके जीवन में एक बदलाव आया और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। वे एक बेहतरीन कवि और लेखक भी थे। उर्दू और हिंदी में बिस्मिल, राम और अज्ञात उपनामों से कविताएं उन्होंने लिखी हैं और उनका बिस्मिल उपनाम सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ होता है घायल या बेचैन।
1: दोस्तों, 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में खिरनीबाग मोहल्ले में रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। उनके पिता पंडित मुरलीधर कचहरी में स्टैंप बेचने और नगर पालिका में काम करते थे। उनकी माता का नाम था मूलमती।
0: और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और महात्मा गांधी द्वारा 1922 में अचानक असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद देश के युवा निराश हो गए थे, लेकिन बिस्मिल का मानना था कि अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, उसके लिए उन्हें सशस्त्र क्रांति जरूर करनी होगी। 1924 में उन्होंने सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शासन का गठन किया था और क्रांतिकारी गतिविधियां और हथियार खरीदने के लिए धन की सख्त जरूरत थी, जिससे ब्रिटिश सरकारी खजाने को उन्होंने लूटने की योजना भी बनाई थी।
1: जन्म के समय उंगलियों पर चक्र के निशान को देखकर भविष्यवाणी उनकी ये की गई थी कि ये बालक बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। घर वालों ने प्यार से उनका नाम राम रखा था। बिस्मिल जी के पिता उन्हें उर्दू सिखाना चाहते थे, इसलिए शाहजहांपुर में उनका दाखिला करवाया गया। इसके बाद अंग्रेजी माध्यम से उनका जो शिक्षा थी वो चलती रही। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी इस बात का जिक्र किया है। रामप्रसाद बिस्मिल को किताबें पढ़ने का खूब शौक था। आर्य समाज मंदिर के एक मुंशी जी ने उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दी।
2: और रामप्रसाद बिस्मिल का जीवन, उनका बलिदान आज भी हमारे हर भारतीय को राष्ट्रप्रेम और देश की सेवा के लिए प्रेरणा देता है।
1: रामप्रसाद बिस्मिल का जो पढ़ने का शौक था वो आगे भी चलता रहा। उन्होंने कई शायरियाँ लिखी हैं, उन्होंने कविताएं लिखी हैं और देश में नौजवानों को उठकर खड़े होने के लिए उन्होंने जोश भी इन्हीं कलम के शब्दों से दिया।

0: तभी से ध्यान देने वाली बातें होती हैं, क्योंकि मकान बार बार नहीं बनते। तो आज इको टॉक में हम बात करेंगे ग्रीन बिल्डिंग्स और ऊर्जा संरक्षण की। तो सबसे पहले बात आती है कि ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे भवनों के निर्माण और डिजाइन जो अपने पूरे जीवन काल में पर्यावरण पर किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाए, इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्राकृतिक रोशनी का प्रबंध हो जिससे हर समय बिजली पर निर्भर न रहना पड़े।
1: इन इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं, जिससे अपनी खुद की बिजली उत्पादन का स्रोत वो बन जाता है और पावर ग्रिड पर निर्भरता भी कम हो जाती है।
0: और वर्षा का जल यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध हो, भवन निर्माण में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो, प्राकृतिक हवा यानी वेंटिलेशन और रोशनी की पूरी व्यवस्था हो। वेंटिलेशन सही नहीं होने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो अब बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण की। इसमें ऊर्जा की ऐसी व्यवस्था जिसमें कम ऊर्जा में आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पुरानी तरह के बल्ब की जगह आप LED बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे रोशनी ज़्यादा और बिजली की खपत कम होती है। फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन खरीदते समय B रेटिंग 5 स्टार वाले उपकरण ही खरीदें। इससे बिजली की काफ़ी बचत भी होती है और चलते भी ये खूब हैं। वैसे ग्रीन बिल्डिंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊर्जा संरक्षण पर ही टिका होता है।
1: इसी को जोड़ते हुए अगर हम घर जो बनाते हैं उन्हें ग्रीन बिल्डिंग जिसे कहते हैं, उसे अगर हम कूल रूफ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से छतों पर एक रिफ्लेक्टिव पेंट का लेयर लगा देते हैं या टाइल्स लगा देते हैं, तो सूरज की जो गर्मी होती है वो छतों की सतह पर से रिफ्लेक्ट कर देती है और घर जो है वो अंदर से प्राकृतिक रूप से ठंडा रखते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उन पर निर्भरता कम होती है।
0: जी, अगर हम उदयपुर शहर की बात करें तो उदयपुर भी अब आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन बिल्डिंग्स की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें शहर में ग्रीन इमारतों के नाम हैं यशत भवन। यह उदयपुर की पहली ऐसी इमारत है जिसमें CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसलिंग द्वारा सर्वोच्च प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा प्रणाली, जल पुनर्चक्रण और ऊर्जा कुशल प्रकाश जैसी आधुनिक हरित तकनीकें शामिल है। और दूसरा उदयपुर का है रेलवे स्टेशन, जिसमें पुनर्विकास में पर्यावरण अनुकूल निर्माण को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। इस ग्रीन बिल्डिंग परियोजना में विशाल सोलर पैनल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा शहर में तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक इमारतें जो आधुनिक टिकाऊ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, वो है थर्ड स्पेस। और इसके बाद है बलीचा में स्थित IIM, जो भारतीय प्रबंधन संस्थान का नया कैंपस है। इसे पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण से साथ बनाया गया है और इसमें ऊर्जा की बचत और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए विशेष निर्माण रणनीतियों को लागू किया गया है।
1: भारत में ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणीकरण के लिए एक राष्ट्रीय रेटिंग सिस्टम भी है जो ये प्रमाणित करता है कि कोई इमारत पर्यावरण के कितने अनुकूल है या नहीं है। ये रेटिंग सिस्टम कहलाता है एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग। एक प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग आम इमारतों के मुकाबले 30-50% तक बिजली की बचत करती है, 40% तक पानी की खपत को कम करती है और जहरीले गैसों के उत्सर्जन को भारी मात्रा में घटाने में ये मददगार साबित होती है। यानी कहा जा सकता है कि ग्रीन बिल्डिंग सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि हमारे भविष्य और मंथली बजट के लिए भी एक बेहतरीन निवेश है। इसलिए इसकी शुरुआत अपने घर के छोटे छोटे बदलाव से हमें ज़रूर करनी चाहिए।

एक खूबसूरत आरामदायक घर का सपना हर किसी का होता है और उस घर को बनाने के लिए अपनी कमाई का काफी बड़ा हिस्सा वो मकान बनाने में लगा देता है। किंतु बहुत सारी बातें ऐसी होती है जब हम जमीन खरीदते हैं या मकान बनाने के

नमस्कार उदयपुर, ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा 9:10 से। फिलहाल वक्त हो चला है कि हम आपको जोड़े आकाशवाणी जयपुर के साथ और यहाँ से आप सुनेंगे ठीक 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी उदयपुर और FM रेडियो लेक सिटी।

0: घर के साथ। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना गढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना। 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। श्री शर्मा कल नई दिल्ली के

0: भारत मंडपम में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रामजल सेतु लिंक, यमुना जल समझौता, जयपुर मेट्रो फेज टू और रिफाइनरी जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं से राजस्थान में विकास का नया युग शुरू हुआ है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश में विभिन्न वर्गों को मिल रहा है। पाली के रहने वाले किसान रामचंद्र ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम बी योजना के तहत 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। इससे बिजली की बचत होने के साथ ही खेती में लागत भी कम हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: भारत सरकार की जो वाटर शेड स्कीम है उसके तहत मैंने एक डिक्की बनवाई, उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री कुसुम की योजना के तहत ये 5 किलोवाट का सोलर लिया जिसकी लागत 3,05,000 है, लेकिन सरकार किसानों को मात्र 1,30,000 उपलब्ध करा रही है। इस योजना के लाभ से ये कृषि कार्य में सुगमता आने लगी है एवं खेती की लागत में बहुत कमी आ गई। और सरकार ने जो ये सराहनीय कार्य किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर हैं। वे अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं। ये राज्य की 94% क्षेत्र को कवर करते हैं और 99% आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच है। कार्यक्रम के बाद श्री वैष्णव एमएनआईटी जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित के कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आग जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना है। इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, बिजली व्यवस्था, वातानुकूलन, आपातकालीन निकास, फायर फाइटिंग सिस्टम और पानी की उपलब्धता सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा इंतजामों की गहन जांच की जाएगी। स्टेशनों की जांच के लिए रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर राज्य अग्निशमन विभाग और विशेषज्ञ एजेंसियों का सहयोग भी लिया जाएगा। ऑडिट के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से आकलन किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। इनमें अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में 14 जून तक तेज आंधी और बारिश का दौर बना रह सकता है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विशेष तौर पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी और उमस का असर लगातार बना हुआ है। कल श्रीगंगानगर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि 19 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के पहले चरण की सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार को देखते हुए ये फैसला किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में ये सुधार दर्ज किया गया है। ग्रैप से जुड़ी उपसमिति प्रदूषण की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है और भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार आगे के

0: आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। डाक विभाग ने युवाओं और छोटे व्यापारियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइजी योजना 2.0 शुरू की है। पाली डाक विभाग के अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, पिकअप और डिलीवरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस और ट्रैक्ड पैकेज सर्विस की बुकिंग का भी काम होगा।
1: इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट या पार्सल बुकिंग, पिकअप, कलेक्शन और पार्सल डिलीवरी, इंटरनेशनल ईएमएस ईएमआई तथा इंटरनेशनल ट्रैक पैकेज सर्विस जैसी सेवाओं की बुकिंग की जा सकेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं में आमजन की भागीदारी बढ़ाना है, ई कॉमर्स क्षेत्र में डाक विभाग की पहुंच मजबूत करना है और रोजगार के अवसर देना है। पाली के युवा और देश के युवा, राज्य के युवा अधिक से अधिक इस योजना से जुड़े और डाक विभाग में अपनी भागीदारी भी बढ़ाएं और रोजगार के अवसर भी डाक विभाग के माध्यम से प्राप्त करें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर, आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा। और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में।

0: क्षिति देखो, अपना जो उदयपुर शहर है झीलों की नगरी, अपने झीलों के लिए तो प्रसिद्ध है, अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अपने धार्मिक स्थलों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो हमारे उदयपुर के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, परशुराम महादेव जी का मंदिर। ये पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थलों में से एक है। अरावली की खूबसूरत और दुर्गम पहाड़ियों के बीच ये गुफा में स्थित मंदिर है। इसको मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है। यह मंदिर राजस्थान के राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर स्थित है। मुख्य गुफा मंदिर राजसमंद जिले में आता है और नीचे जो स्थित कुंड धाम है वो पाली जिले के देसुरी तहसील में आता है। यह प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग से मात्र 10 किलोमीटर दूर है और रणकपुर से 7 किलोमीटर दूर है।
1: परशुराम का जो ये पौराणिक जो मान्यता के अनुसार हम मानते हैं कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अपने गुरु भगवान शिव की कठोर आराधना करने के लिए इस स्थान को चुना था। उन्होंने अपने दिव्य फरसे के प्रहार से इस पहाड़ी चट्टान को काटकर इस अनूठी गुफा का निर्माण किया था। पिता की आज्ञा से हुए मातृहत्या के दोष के निवारण और आत्मशांति के लिए परशुराम जी ने इसी गुफा में स्थित स्वयंभू शिवलिंग के सामने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान, धनुष, अक्षय तुनीर और कई अन्य दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। गुफा के भीतर एक शिला पर एक राक्षस की आकृति बनी

0: हुई है। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने अपने फरसे से उस दुष्ट राक्षस का वध किया, जिसके बाद वो पत्थर बक्का बन गया।
1: और इस प्राकृतिक गुफा के भीतर एक स्वयंभू शिवलिंग भी स्थापित है और शिवलिंग के ठीक ऊपर चट्टान का स्वरूप गाय का थन जैसा बना हुआ है और इसमें शिवलिंग पर 24 घंटे प्राकृतिक रूप से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में गुफा लगभग 180 किलोमीटर लंबी थी, जिसका दूसरा छोर चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया नामक स्थान पर नदी के पास खुलता था, जहाँ परशुराम जी ने स्नान किया था। समय के साथ प्रकृति ने इस रास्ते को बंद कर दिया और अब गुफा केवल 5 से 7 मीटर अंदर तक ही रह गई है। और पहाड़ी पर स्थित मुख्य गुफा मंदिर पहुंचने के लिए अगर बात करें तो 500 से 600 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और अगर मेवाड़ की ओर से यानी राजसमंद की ओर से अगर आप जा रहे हैं तो ये रास्ता लगभग 1200 मीटर है और इसकी दूरी तो कम है लेकिन इसकी चढ़ाई काफ़ी कठिन है। और पाली सादड़ी की तरफ से आप अगर जा रहे हैं तो इसका रास्ता 1600 मीटर है, जिसमें चढ़ाई मेवाड़ वाले रास्ते की तुलना में थोड़ी सी कम और सुगम है।
0: पहाड़ी के नीचे 3 पवित्र कुंड बने हुए हैं जिनमें पूरे 12 महीने पानी भरा रहता है। तीर्थयात्री यहाँ स्नान या आचमन करने आते हैं। ऊपर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। वैसे तो यहाँ साल भर श्रद्धालु आते हैं लेकिन सावन और भादो के महीने में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य चरम पर होता है। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों में हरियाली छा जाती है और झरने बहने लगते हैं, जिससे यहाँ का माहौल स्वर्ग जैसा सुंदर दिखाई देता है।
1: और हर साल श्रावण के महीने में यहाँ पर एक मेला भी भरता है और इस दौरान लाखों की संख्या में शिव भक्त कोने कोने से आते हैं दर्शन करने के लिए। यदि आप भी शांति से दर्शन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो सर्दियों और गर्मियों का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है और वैसे आप मानसून के मौसम में भी यहाँ पर आ सकते हैं, प्राकृतिक दृश्य का आनंद भी ले सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं।
0: यहाँ पर कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के इसके पास होने के कारण आप यहाँ पर भी ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं।

0: तो श्रुति, आपने एक कहावत सुनी होगी जरूर कि पहला सुख निरोगी काया।
1: जी,
0: हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि उसका जीवन स्वस्थ और निरोगी काया रहे, और इसके लिए वो प्रयास भी करते हैं। शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाने में सबसे ज्यादा सहायक होता है योग। योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्ट्रांग बनाता है, किंतु योग को सही तरीके से नहीं किया गया तो इसके फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो अवेयरनेस में आज हम बात करेंगे योगासन के साथ क्या सतर्कता बरतनी चाहिए।
1: जब हम बिना किसी गाइडेंस के या सावधानी नहीं बरतते हैं तो कई बार हमें योगासन भी मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द या लिगामेंट इंजरी का खतरा दे देते हैं। योग का नियम है स्थिर सुखम आसनम, यानी जिस स्थिति में आप स्थिरता और सुख का अनुभव करें वही आसन है।
0: और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो वो है कि गुरु के बिना आप बिल्कुल भी ये योग न करें, वीडियो देखकर या किसी किताब को पढ़कर आप बिल्कुल भी योग न करें, क्योंकि आप जो योग करते हैं वो आपकी उम्र की और आपकी शरीर की क्षमता को देखकर करते हैं। तो योगासन खाली पेट ही करना चाहिए, अच्छे विचारों के साथ खुले स्थान पर जहाँ शुद्ध और ताज़ा हवा आती हो, जगह साफ सुथरी हो, वहाँ पर आप सबसे पहले स्ट्रेचिंग करें, वार्म अप करें और उसके बाद योगाभ्यास शुरू करें।
1: आपको ये भी देखना होगा कि आपकी शारीरिक सीमा क्या है, उसकी आपको पहचान करनी होगी। बीमारियों और चोट का अगर है आपके शरीर में तो उनका ध्यान रखें। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी या रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है तो उन्हें आगे झुकने वाले आसनों से बचना चाहिए। वहीं गर्भवती महिलाओं या कलाई की चोट वाले लोगों को अधोमुख श्वानासन जैसी मुद्राएं बिना विशेषज्ञ की सलाह के नहीं करनी चाहिए।
0: आरामदायक ढीले और सुविधाजनक कपड़े पहने और अच्छे ग्रिप वाले मैट पर ही योग करें, नहीं तो आप फिसल जाएंगे और कहें कोई भी मुद्रा करते समय आपको चोट लग सकती है। तो मैट आपका अच्छा होना चाहिए। जल्दबाजी में कोई योग ना करें, नहीं तो झटका भी लग सकता है। गर्दन या कमर में चणक कहते हैं जिसको, वो आ सकती है, चोट लग सकती है या कोई दूसरी तरह की परेशानी हो सकती है।
1: ये आपके शरीर और मन को जोड़ने का एक जरिया है। हमेशा किसी प्रमाणित योग शिक्षक की देखरेख में ही शुरुआत करें और अपने शरीर की आवाज़ आप खुद भी सुनें
0: और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करें। अगर घुटना नहीं मुड़ रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप घुटना मोड़ कर ही करें। अगर आप 50 साल के हैं या 50 साल से ऊपर के हैं और आप ये सोचें कि अगर 25 साल वाला लड़का या 25 साल वाली लड़की ये योग कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो इस तरह से किसी तरह का कोई कॉम्पिटिशन न करें और नहाने के बाद एकदम से बिल्कुल भी योग न करें और योग करने के बाद एकदम से न तो नहाएं न खाना खाएं बिल्कुल, और कठिन योगाभ्यास बिल्कुल भी न करें अगर आपका शरीर नहीं चलता तो।
1: और जब योग करते हैं उस समय टीवी देखना, गाना सुनना या मोबाइल चलाना, इस प्रकार की गतिविधियों से भी बचें जिससे आपका पूरा ध्यान आपके योगासन में और आपके इस मेडिटेशन को पूरी तरीके से भाव मिले।
0: चलिए और अब सुनवाते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत और इस गीत के साथ ही श्रोताओं से ले लेते हैं इजाजत। तो आज इस कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ अनीता और मेरे साथ थे
1: श्रुति वर्णा।
0: दीजिए इजाजत,
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम। ये है आकाशवाणी उदयपुर, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील

0: सिलहासी, जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में
0: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं
0: जी।
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की
0: जी,
1: ये तो बताइए श्रोताओं को आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं।
0: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या।
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं
0: जी।
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं
0: जी।
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
0: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं
0: जी।
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है
0: जी।
1: या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार
0: जी।
1: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते
0: जी।
1: हैं। फिर क्या होता है?
0: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं
0: जी।
1: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी।
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनान कॉर्टेस अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है। श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में

0: दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
1: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली

0: काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूं कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: रामकृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब यह विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती।

0: सकती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते

0: छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: छह इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस समय 9:50 हो चुके हैं। अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी जयपुर से, जहां से आप सुनेंगे विशेष प्रसारण।
2: की सांसद मंजू दीदी, दीदी सभी इनको दीदी बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी दीदी बोलते हैं। वो दीदी अलग टाइप की थी, दूसरी वाली। ये हमारी जयपुर की दीदी, जयपुर के घेवर जैसी है बिल्कुल। सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, पार्लियामेंट में, सदन में, लोकसभा में, सब भी आपको मंजू दीदी के नाम से जानते हैं। वैसी हमारी दीदी, हमारे ऊर्जा के मंत्री, ऊर्जावान श्री हीरालाल नागर जी, जिन्होंने राजस्थान के ऊर्जा के मानचित्र को पूरी तरह से बदल दिया है। हमारे एमएलए साहब श्री गोपाल शर्मा जी, जो जब बोलते हैं मजा आता है सुनने का।

एक अलग ही आनंद आता है। एक कार्यक्रम में मैं साथ था आपके, बहुत ही आनंद आया था। और जो अभी बोल रहे थे कि मानव संवेदनाओं के चितेरे, मुझे तो ऐसे ऐसे शब्द भी नहीं आते भाई लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े ऐसे श्री प्रसून जोशी जी, जिन्होंने जीवन में, समाज में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा अद्भुत नाम कमाया है। और आज हमारे साथ प्रसार भारती को एक नया स्वरूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको जिम्मेदारी दी है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ और जुड़े हैं श्री पंडित विश्वमोहन भट्ट जी। आपने वीणा को दुनिया में एक नया नाम दिया। मेरे ख्याल से वीणा के बारे में आपसे बेहतर जानने वाले विश्व में शायद ही कोई होंगे। हमारा सौभाग्य आज आप पधारे इधर। उस्ताद मोइनुद्दीन खान जी, आप पधारे, बहुत ही अच्छा लगा। सारंगी में व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, मज़ा आता है। आप पधारे आप दोनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सलील भट्ट जी भी, आप भी पधारे। मैं पंडित जी को भी धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि आज स्वास्थ्य कमजोर होते हुए भी आप यहाँ आए, बहुत धन्यवाद आपको। सीधा अस्पताल से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी श्री राजीव जैन जी, आप भी हैं। जैसलमेर में हमारे बहुत ही मजबूत विधायक छोटू सिंह जी भाटी जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी नमस्कार। छोटू सिंह जी, जब हम जैसलमेर गए थे, वहाँ से स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू करने गए थे, वही छोटू सिंह जी ने जो बाजरे का चूरमा खिलाया, मज़ा आ गया था। आज भी याद आता है, छोटू सिंह जी भेजिएगा भाई बाजरे का चूरमा, मज़ा आ गया था। बाजरे के सोखरे को फर्स्ट क्लास चूर के छोटू सिंह जी, राम राम भाई साहब खमागणी, बहुत मज़ा आ गया था। तो ऐसे हमारे मजबूत विधायक, और विशेषकर जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु जुड़े हैं, हमारे अधिकारी बंधु जुड़े हैं और पत्रकार बंधु जुड़े हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो बॉर्डर इलाके का एक FM ट्रांसमीटर चालू हुआ है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस, सूचना संपर्क विभाग, आकाशवाणी का प्रसार, वो सब ठीक है, लेकिन कुछ दिनों पहले माननीय गृह मंत्री जी बॉर्डर एरिया का निरीक्षण करके गए थे, बीकानेर गए थे और बॉर्डर एरिया को पूरा देख के आए थे। तब उन्होंने कहा कि हमारे पूरे बॉर्डर एरिया को हमें कंप्लीट आकाशवाणी दूरदर्शन से पूरी तरह से कवरेज करना है, तो उस सीरीज़ में हम इसको काम को चालू कर रहे हैं। मैं राजीव जी को रिक्वेस्ट किया हूँ, अपने CEO साहब को भी किया था मैंने, गौरव जी को, राजीव जी आप भी पूरा बॉर्डर एरिया उठा लें, कच्छ से लेके कंप्लीट अपना जम्मू कश्मीर तक, जो भी एरिया में जहाँ पर भी कोई गैप हो बॉर्डर एरिया में, आकाशवाणी का और दूरदर्शन का भी, दूरदर्शन का भी आप देख लें, प्रसार भारती की तरफ से आप सभी देखेंगे, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी का कहीं पर भी कोई भी गैप हो, उस गैप को हमें फिलअप करना है, पूरे बॉर्डर एरिया को हमें कंप्लीटली कवर करना है। आज ये पहली उसकी कड़ी है। और जैसलमेर जिले का करीब करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल, 80 किलोमीटर का रेडियस कवर करके ये ट्रांसमीटर सब जगह पहुंचाएगा विश्व की, हमारी संस्कृति की बात को। मैं थोड़ी बात रेलवे की करना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान को वर्षों वर्षों तक रेलवे के हिसाब से इग्नोर किया गया था, वर्षों वर्षों तक। बॉर्डर एरिया है, इतना बड़ा विशाल प्रदेश है, एक सामरिक दृष्टि से भी, स्ट्रैटेजिक दृष्टि से भी देखो तो राजस्थान का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे देश की स्ट्रैटेजिक टाइम फ्रेम में, स्ट्रैटेजिक फ्रेम में। ऐसे में राजस्थान के लिए जब UPA की सरकार थी, मात्र 682 करोड़ रुपए का बजट रेलवे के लिए दिया जाता था। इतना विशाल प्रदेश और इतना महत्व सामरिक, जनता की आकांक्षाओं पे कहीं पर भी UPA की सरकार के समय में रेलवे का खरे उतरने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि जनता जो भी आकांक्षा करे, कोई उसके लिए काम करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, वो फंड्स होते नहीं थे। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी ली
और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कल

उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का एक नया कीर्तिमान बनाया। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिल रहा है जो देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना और एक ऐसी नींव रखना जो कि भारत को विकसित भारत बनाएगी। तो जब मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली तो 10,228 करोड़ रुपए का भी अपने को राजस्थान के लिए बजट मिलता है, यानी जो बजट पहले मिलता था उसका 15 गुना। हमारे जनरल मैनेजर साहब यहाँ पर है, अमिताभ जी, अभी जीएम साहब एयरपोर्ट से आते हुए मुझे बता रहे थे कि करीब 200 स्टेशनों का पूरे प्रदेश में 200 स्टेशनों का प्लेटफॉर्म्स को ठीक करना, उनकी ऊंचाई पूरी करना, उनकी लेंथ पूरी करना। जीएम साहब 200 करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर का स्टेशन कितने लोगों ने देखा भाई, कैसा लगता है भाई पीछे कैसा लगता है? अच्छा है तो पता नहीं चल रहा है। गांधीनगर का स्टेशन फोटो है, कैसा है? खातीपुरा कितने जनों ने देखा है? थोड़े दिन बाद में उसका खातीपुरा में जो साइडिंग है उसका इनॉग्रेशन करेंगे। अपने इतना रेलवे का काम हाथ में लिया है कि आनंद आता है देख के कि मोदी जी ने देश का ये अपना जयपुर का स्टेशन। अभी मुझे एक भाई पूछ रहे थे कि स्टेशन के काम में किस तरह की कठिनाई आ रही है, मैं उनको समझा रहा था विदेशों में जब स्टेशन का काम करते हैं तो पूरे ट्रैफिक को बंद कर देते हैं, यानी रेलगाड़ियां आएगी नहीं जाएगी नहीं वहां से, कई जगह तो 5-5, 6-6, 7-7 वर्षों तक, 7 साल तक ट्रैफिक बंद। इस तरह का भी देश दुनिया में कई उदाहरण है, अपने देश में तो ऐसा नहीं कर सकते, अपने तो एक दिन भी गाड़ियां अगर रुक जाए तो जैसा समझते हो मैं क्या बोलूं, समस्या बड़ी हो जाए। इसीलिए काम को बहुत सावधानी के साथ करते हुए, बड़े स्टेशन का टाइम फ्रेम है 4-6 साल का करीब करीब, और छोटे स्टेशन का टाइम फ्रेम है 2-3 साल का, सावधानी के साथ ध्यान रखते हुए। और प्रदेश की जो कठिनाई, अभी मुझे भाई हमारे एमएलए साहब गोपाल जी भाई साहब बता रहे थे और दीदी मंजू जी बता रहे थे, स्टेशन के सामने लोगों की कुछ समस्या है, तो मैं JDA से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको बहुत संवेदना के साथ करें। जो भी हमें डेवलपमेंट करना है, किसके लिए डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट तो लोगों के लिए है, नागरिकों के लिए है, तो वो जो भी हम डेवलपमेंट करें संवेदना के साथ करें, और उसमें जल्दबाजी ना करके सबको साथ लेके सबकी बात करके सबको समझ के उनके लिए क्या किया जा सकता है वो सब समझ के ही हर चीज़ को करें। तो आप दोनों इसमें लीडरशिप लीजिए, और माननीय मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी JDA को इसको बात में बता देंगे। वैसा ही गांधीनगर स्टेशन भी बहुत ही सुंदर बन रहा है, जयपुर गांधीनगर, ये जयपुर गांधीनगर का, मतलब जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन्स को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी। स्वर्ण नगरी है जयपुर, स्वर्ण नगरी है जैसलमेर, ये जैसलमेर का स्वर्ण नगरी का स्टेशन कंप्लीट हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। इतना सुंदर काम हुआ है, इतना सुंदर काम,
जीएम साहब बहुत धन्यवाद, हमारे अमिताभ जी, जीएम साहब।

0: साहब, हमारे रेलवे के करीब 10,000 अधिकारी हैं, उनमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट अधिकारी हैं। एक बार जरा आप सब इनका अभिवादन करें। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स हैं रेलवे के, चार पांच जो बहुत अच्छे अधिकारियों में जिनको मैं मानता हूँ उनमें से आप हैं। इसी महीने इनका कंप्लीट टेन्योर कंप्लीट होता है, लेकिन अपने 2-2.5 वर्षों के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जोधपुर का स्टेशन, बहुत ही सुंदर डिजाइन है और बहुत ही अगले 50 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजाइन जो भी करो अगले 50 वर्षों की। ये अलवर का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, सेकेंड एंट्री तो बन ही गया है। बीकानेर, भुजिया की नगरी बीकानेर, भाई साहब
1: आपका
0: कोटा का स्टेशन, कोटा को मॉडर्न बनाया है, जहां पे स्थापत्य कला, जहां पे मॉडर्न, जैसा जहां का स्वभाव, जहां की डिमांड, उसके हिसाब से सारा काम किया गया है। अजमेर, बहुत सारे स्टेशन हैं छोटे बड़े, कभी आप देखना सोशल मीडिया पे काफी। ये आबू रोड, मतलब पूरे प्रदेश में आज 85 स्टेशन्स का काम, 85 स्टेशनों पे काम चल रहा है। करीब करीब 4,600 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टेशनों में, जिससे कि एक प्रदेश के लिए एक नई नींव बने, एक बहुत आगे के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा। 15 स्टेशन पे काम पूरा हो गया है, करीब करीब 23 स्टेशन पे हो गया है, और लेकिन एग्जैक्ट हमारे सिस्टम में जब तक काम एकदम 100% पूरा नहीं होता तब तक उसको पूरा नहीं बोलते। बाड़मेर, बूंदी, दौसा, डीग, देशनोक तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इनॉग्रेशन के टाइम में गए थे, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद। फतेहपुर शेखावाटी, गंगापुर सिटी, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, राजगढ़, खैरथल, जैसलमेर, मांडलगढ़, मंडावर, महवा रोड, सोमेसर के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी है। चाय पीते थे स्टेशन के बाहर, गांव से आते थे जब गाड़ी पकड़ने के लिए। और करीब 80% काम कंप्लीट हो गया है 45 स्टेशनों में, बहुत सारे स्टेशन हैं और काफ़ी करीब करीब अच्छी प्रोग्रेस है। साथ ही साथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, जिसको हमने गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल की ब्रांडिंग दी है, 10 हो गए राजस्थान में कंप्लीट। मारवाड़, मुंडवा, खेमली, भोपाल सागर, सोनू, हनवंत, सुंदलक, मांडलगढ़, न्यू सरादना, हिरनौदा, केरला, ये 10 कंप्लीट हो गए। 6 पे काम चल रहा है, जोगी मगना, लानेला, धानक्या तो पंडित दीनदयाल जी की भूमि है, तो वहाँ भी एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के हिसाब से। कोटा में, नवलगढ़ में, बीरदवाल में, और उसके बाद में 8 और अप्रूवल दिए हैं, तो एक तरीके से राजस्थान को रेलवे का पूरा बेनिफिट मिले और राजस्थान की इंडस्ट्री हो, जनसाधारण हो, उन सब के लिए बहुत सारे काम, कई सारे काम हाथ में लिए। आगरा से बांदीकुई की डबलिंग 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ की डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा का गेज कन्वर्जन वर्षों से पेंडिंग पड़ा था। मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली ये लाइन है, जो सदियों से बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी, ये लंबे टाइम से गेज कन्वर्जन नहीं हो रहा था, मीटर गेज थी और एक तरीके से डिफंक्ट सी पड़ी थी, इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। नीमच से बड़ी सादड़ी की नई लाइन, पुष्कर, एक बहुत ही हमारे श्रद्धा का बड़ा केंद्र, उसको मेड़ता से जोड़ने की लाइन, रामगंज मंडी से भोपाल मध्य प्रदेश को जोड़ने की लाइन, रेवाड़ी से खटवास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, खटवास है जहाँ पे बहुत बड़ा एक मल्टी मॉडल कार्गो हब है, तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा है। उमरा से देबारी की डबलिंग, लूनी से भिलड़ी, गुजरात जाने के लिए खासकर जो पोर्ट एरिया है वहाँ जाने के लिए ముందుడా.

कांडला इन सब पोर्ट्स के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरा से धौलपुर से झांसी की थर्ड लाइन, फिर धौलपुर सर मथुरा से गंगापुर सिटी का गेज कन्वर्जन, रिंगस से सीकर की डबलिंग, सवाई माधोपुर से जयपुर की डबलिंग, शिवपुर कला मध्य प्रदेश में से कोटा की नई लाइन, तरंगा हिल अंबाजी, अंबाजी श्रद्धा का इतना बड़ा केंद्र, तरंगा हिल से अंबाजी आबू रोड की नई लाइन, और करीब करीब 46 नई गाड़ियां कोविड के बाद से राजस्थान के लिए चालू हुई है, जिसमें जयपुर की वंदे भारत, अजमेर की वंदे भारत, जोधपुर की वंदे भारत, जैसलमेर से दिल्ली की स्वर्ण नगरी, कई गाड़ियां बीकानेर से मुंबई की गाड़ी, बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत, उदयपुर से चंडीगढ़ की एक्सप्रेस, अजमेर से दरभंगा की गाड़ी जो कि हमारे जयपुर की दीदी मंजू जी ने बहुत ही इसकी डिमांड की थी, अब दीदी की आज डिमांड है कि उसको रेगुलर करना चाहिए। क्या दीदी, दरभंगा वाली गाड़ी को रेगुलर करना चाहिए, कर दे? दीदी कह रही है घेवर खिलाएंगे अगर आप पूरा कर दोगे तो, घेवर नहीं खिलाओगे तो नहीं होगी। खिलाएंगे दीदी घेवर, पक्का मंगवा लिए? चलिए इस गाड़ी को भी रेगुलर कर देंगे, आने वाले कुछ ही दिनों में आकर दरभंगा से अजमेर जयपुर की जो गाड़ी है उसको आने वाले कितने दिन में कर पाएंगे जी एम साहब, 15-20 दिन में कर पाएंगे, पता करके बताएंगे आप। चलिए 15-20 दिन के अंदर प्रयास करें, क्या शिवाजी 15 दिन में कर सकते हैं? कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। एक महीने में? चलिए सभी एक महीने का टाइम ले रहे हैं तो 2 महीने का टाइम देता हूँ मैं, 2 महीने के अंदर अंदर इस गाड़ी को रेगुलर कर देंगे दरभंगा के लिए, जो दीदी की डिमांड है, ये आपकी डिमांड है, इसको रेगुलर कर लेंगे। साथ ही साथ दो और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जयपुर में, एक तो अच्छा AI डेटा सेंटर बना रहे हैं, AI डेटा सेंटर भविष्य का ऑयल है ये समझो, क्योंकि भविष्य की इकोनॉमी AI पे बहुत बड़ी आधारित होगी। तो जयपुर में एक AI डेटा सेंटर का काम चालू कर रहे हैं, काम को फेजेस में करेंगे। अभी मैं माननीय मंत्री जी से, नागर जी से मैं बात कर रहा था कैसे उसके लिए पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी हो सके, और साथ ही साथ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाएंगे जयपुर के लिए, जो हमें बार बार गुड़गांव या दिल्ली जाना पड़ता है उसकी ज़रूरत न पड़े, वो व्यवस्था भी यहाँ पर जयपुर में करेंगे। और यहाँ के नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए MNIT में क्वांटम और AI और सेमीकंडक्टर की 3 नई फैसिलिटी का आज ही उद्घाटन करेंगे MNIT जयपुर में। एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है, और जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का बहुत ही मेहनत का काम है, तो इस डबल इंजन की सरकार में बहुत सारे नए काम राजस्थान में हो रहे हैं, उसी कड़ी में कुछ और नई चीज़ें जुड़ेंगी। आज इस कार्यक्रम में आप सब आए, आकाशवाणी की कई यादें ताज़ा की, मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से, और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से, कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। समय परिवर्तन बहुत पहले हो चुका था, हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधें, डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल। हाइपर लोकल का मतलब ये हुआ, जैसे राजस्थान का उदाहरण दें, अगर हम पश्चिमी राजस्थान में अलग तरह से बोली है, पूर्वी राजस्थान में अलग बोली है, उत्तर में जाओ तो अलग भाषा का एक प्रभाव दिखाई देता है, दक्षिण में जाओ तो भाषा का अलग प्रभाव दिखाई देता है, आदिवासी क्षेत्रों में एक अलग वाइब्रेंट कल्चर है, शहरी क्षेत्रों का अलग, एक अलग उसकी ताकत है, उसकी अलग ऊर्जा है। क्या हम आकाशवाणी का उपयोग करके, क्या हम दूरदर्शन का उपयोग करके हाइपर लोकल उस क्षेत्र के कलाकारों को, उस क्षेत्र के नए क्रिएटर्स को, गांव के, कस्बे के, नगर के कलाकारों को,
वहाँ के

0: क्रिएटर्स को वहाँ पे काम, किसी भी तरह का कोई पत्थर की मूर्ति गढ़ रहा है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया तक पहुँचने की, कोई बहुत सुंदर तरीके से कारीगरी का काम करता है, कोई बहुत अच्छा वीणा का शिष्य है पंडित जी का उसको एक मौका मिले, कोई सारंगी हो, कोई बांसुरी हो, कोई किसी भी तरीके से किसी भी वाद्य यंत्र के माध्यम से, किसी भी गायन के माध्यम से, किसी भी तरीके से जुड़ता है उसको जोड़े, उसको अपॉर्चुनिटी दे, हाइपर लोकल, हाइपर लोकल, वो आप एक परिवर्तन अगले 3 वर्षों का टारगेट ले, 1000 दिन का टारगेट ले, और 1000 दिनों में हाइपर लोकल डिजिटल फर्स्ट, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है और जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, जब चाहे अपनी खुद की ऐप बनाएं, जिस तरीके से लोकल न्यूज़, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान, जयपुर आए तो घेवर की बात करें, दाल बाटी चूरमा की बात करें, बाजरे का चूरमा की बात करें, सोगरे की बात करें, ग्वारफली की सब्जी की बात करें, ये चीज़ें समझाएं, राजस्थान के गट्टे की सब्जी की बात करें, कई जो चीज़ें हैं अपनी संस्कृति की और देश भर में, उड़ीसा जाओ उड़ीसा की, बंगाल जाओ बंगाल की, तमिलनाडु जाओ तमिलनाडु की, संस्कृति को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए हाइपर लोकल डिजिटल फर्स्ट। इस आधार पे अगले 1000 दिनों में अच्छा एक्शन प्लान बना के, एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। आप जो जमीन से जुड़े हुए आकाशवाणी के सभी कर्मचारी और सभी साथी हैं, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप, इस भावना के साथ काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आभार, बहुत बहुत आभार हम सभी के समक्ष अपने उद्बोधन से।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 20 किलोवाट ट्रांसमीटर रामगढ़ जैसलमेर में जो उद्घाटन हुआ है, उस कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय का उद्बोधन।
3: और बहुत ही सुखद अवसर है ये जितेंद्र, हम सब के लिए, कि राजस्थान में ये 39वां FM ट्रांसमीटर स्थापित हुआ।
2: जी हाँ, और श्रोताओं, ये मंत्री जी के उद्बोधन के साथ ही अब हम आपसे चाहते हैं इजाजत।
3: और
2: दीजिए इजाजत,
3: इस प्रसारण से हमें इजाजत दीजिए। मैं राजकुमारी कर्णानी और
2: मैं जितेंद्र वर्मा,
3: और अब आगे का सफर आप तय करेंगे हमारे साथी रौनक के साथ।

अभी आप सुन रहे थे विशेष प्रसारण आकाशवाणी जयपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:17 हुए हैं। अब आपको लिए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की तरफ।

फिल्म संगीत का ये कारवां शुरू हो चुका है और आपने ये गीत सुना, ये गीत सबके दिलों को छू ही जाता है और हमें ये हम सबको हर एज में यानी हर आयु वर्ग के लोगों को ये गाना सच में बहुत कुछ सिखा भी जाता है। आप हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं एक संदेश और फिल्म संगीत के इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे।

अभी आपने ये गाना सुना फिल्म धड़कन से, नदीम श्रवण का संगीत था, समीर ने गीत के बोल लिखे, और आप तक ये जो गाना था ये पहुंचा उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार शानू की मिली जुली आवाज़ों में। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म है ढाई अक्षर प्रेम के, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये गीत।

रवि का लिखा ये गीत आपने सुना प्रेम धवन के संगीत से सजा। फिल्म का नाम ढाई अक्षर प्रेम के और इसी का शीर्षक गीत आपसे लिखे थे अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाज में।

इस्माइल दरबार के संगीत से सजा और सलीम बिजनोरी किया ये लिखा ये गाना आपने सुना सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म का नाम दीवानगी। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म है दीवाने, आवाज़ें हैं कुमार शानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की।

दीवाने इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना, संगीत संजीव दर्शन का था और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, आवाज़ें जो थी वो थी कुमार शानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की। अगला गीत आप तक तो पहुंचेगा फिल्म तुम बिन से, चित्रा की आवाज़ में।

0: Akashvani at 90.
1: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बसंत काबरा का सरोद पर बजाया राग मियाँ की तोड़ी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सरोद पर बजाई राग मियां की तोड़ी सुनी। आकाशवाणी का यह उदयपुर केंद्र है।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुड्ढू।
7: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
8: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान

0: आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम के पहले गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दादी कौन सा प्लांट है?
5: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
6: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

ठुकराओ ना दिल का नजराना टूटे हुए पैमानों की तरह। अशोक खोसला की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम बस यहीं तक। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में है, फिल्म का नाम है लहू के दो रंग।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुड्ढू।
6: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
7: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
8: कूल रहो।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दादी कौन सा प्लांट है?
5: टैंजरीन, बहुत मीठा।

0: होता है, उड़ना नहीं है।
1: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। अवतार फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मिलीजुली आवाज़ों में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: दी, ये देख कैसे?
6: हैप्पी बर्थडे भाई।
5: दीका,
7: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
8: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
9: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
10: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: I know na.
10: RBI कहता है,
11: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।
12: आप तो ऐसे न थे। जी हाँ दोस्तों, यह है फिल्म का नाम, जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की मिली जुली आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आपकी कसम।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की मिली जुली आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म प्रेम पुजारी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज आकाश

0: आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ किया। ये ट्रांसमीटर एक बड़े क्षेत्रफल में लोगों तक रेडियो की पहुंच को सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इस ट्रांसमीटर के बनने से और अधिक लोग रेडियो से जुड़ सकेंगे। उन्होंने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी के व्यापक प्रसारण नेटवर्क उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल सूत्र पर काम करने को कहा, जिससे स्थानीय कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स को अधिक से अधिक मौका और प्रोत्साहन मिले।
1: हाइपर लोकल डिजिटल फर्स्ट, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है और जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, जब चाहे अपनी खुद की ऐप बनाएं। जिस तरीके से लोकल न्यूज, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, गांव के, कस्बे के, नगर के कलाकारों को, वहाँ के क्रिएटर्स को, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया तक पहुँचने की, संस्कृति को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। इस आधार पे अगले 1000 दिनों में अच्छा एक्शन प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें।
0: रेलवे परियोजनाओं का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि प्रदेश में रेलवे का तेजी से विस्तार हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, इनमें से 15 का काम पूरा हो चुका है। श्री वैष्णव ने इस अवसर पर जयपुर अजमेर दरभंगा ट्रेन को जल्द ही नियमित करने की घोषणा की। उन्होंने जयपुर में AI डेटा सेंटर और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाने का भी ऐलान किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसी संस्थाएं अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई एक अत्यंत आवश्यक सेवा है। श्री जोशी ने प्रसारण में सत्यता और प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि सत्य को बिना बढ़ा चढ़ाकर पेश किए संतुलित रूप में समाज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित रहे। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री तथा प्रसार भारती के अध्यक्ष ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के युवा अधिकारियों के साथ संवाद किया। इसके बाद श्री वैष्णव MNIT पहुंचे। वहां उन्होंने क्वांटम AI और सेमीकंडक्टर मेकर्स लैब का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव का दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करने का कार्यक्रम है। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों का उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। राजस्थान पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पिछले 6 दिनों में 50,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. BL मीणा ने बताया कि अवैध फिल्म, नंबर प्लेट, हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। अभियान के 6 दिन रिकॉर्ड 10,825 चालान बनाए गए। प्रदेश में आज जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। बहनें अब सुनेंगी कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी।

0: राम राम रेखा भैसा, राम राम।
1: राम राम गायत्री भैसा, राम राम।
0: सहेलियारी बाड़ी कार्यक्रम हुणवा वाली सगली बेनारो ने आपाणो
1: राम राम, राम सा।
0: देखो कार्यक्रम रो टेम व्यू बेनारे वास्ते भांत भांतरी जानकारी और राजस्थानी गीतारो पिटारो लेन हाजिर व्यहां सा और आपाणी बेना भी नितना वादन नवी नवी जानकारियां हुणे लाभ लेवे। तो आज विचार वाली बात में आपा बेनारे वास्ते लेन आया हां कि सरकारी प्रयास और बेना मैंने कई कई कौशल विकास वे सके, क्योंकि अणी देश रे विकास मैंने बेनारी जो भूमिका है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कहवा कि बेना अगर शिक्षित वेगा, भणी लिखी वेगा, आत्मनिर्भर वेगा, कुशल वेगा, तो वे न केवल अपने परिवार री बल्कि पूरा समाज री पूरा देश री प्रगति में ने योगदान देगा। और क्यों भी लिखो है कि अगर एक बेटी पढ़ेगा तो 100 पीढ़ी तरेगा। अपने परिवार रे वास्ते बेना ने शिक्षित वेणो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आत्मनिर्भर वेणो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और बेना ने कुशल वेणो भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इस उद्देश्य रे वास्ते भारत सरकार जो है वे बेना रे वास्ते कौशल विकास और सशक्तिकरण रे लिए अनेकों योजनाएं चलाई रही है सर।
1: बिल्कुल सर, देखो यह तो घनी बढ़िया बात की थी कि जी सरकारी प्रयास है और आपने जो माता बेना है वड़ा में कौशल विकास घनी तरीकों करी सका सा। तो आणी रे वाते देखो सरकार नरी हरी योजना चलाई है, जणी रे महीने देखो आप बात करा कि जो महिला है वड़ा ने रोजगार और स्वरोजगार का अवसर प्रदान करवाने वास्ते सरकार एक स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी है। आणी रे अला अंतर्गत अगर आप देखा हाँ तो महिला ने सिलाई है, ब्यूटी है, वेलनेस है, कंप्यूटर प्रशिक्षण है, हस्तशिल्प है, खाद्य प्रसंस्करण है, डिजिटल सेवा है और अन्य व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण भी दियो जावे है। अणु जो अपनी बहना है देखो खुद रे पेरा पे खड़ी हुई ने आर्थिक रूप स्वतंत्र बनी रही है।
0: अंडे अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रे माध्यमों बेना ने निःशुल्क प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है और ये जो प्रमाण पत्र है वणा ने रोजगार प्राप्त करना करवा में सहायता करेगा। और ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी बेना है वणा रे वास्ते भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है ताकि वे स्थानीय संसाधन रो उपयोग कर आय अर्जित कर सके। अगर बेना ने अलग अलग तरीका रा वे कौशल हिकेगा, प्रशिक्षण लेगा तो वे कहीं भी क्षेत्र में ने हव कर सकेगा, खुद आत्मनिर्भर बन सकेगा और वनारे आय रो नवो नवो साधन बनेगा सा।
1: बिल्कुल साया तो घनी बढ़िया बात की थी। और लारे लारे देखो जो बहना है अपनो व्यवसाय शुरू करवा वास्ते प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे अंतर्गत बिना गारंटी रे ऋण उपलब्ध करायो जा रो है। अणु कही है कि जी अनेक जी महिला है जी छोटा उद्योग है, ब्यूटीक है, डेयरी है, ब्यूटी पार्लर करनी चाह रही है या बच्चे अन्य कशो भी व्यवसाय शुरू करी रही है तो अणी रे मैंने देखो वणा ने जो है बिना गारंटी ऋण भी मिल रो है। अणी तरह देखो स्वयं सहायता समूह है तो वणी रे माध्यमों भी देखो जी महिला है वणा ने वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करियो जाई रो ताकि जी बेना है अपनो रोजगार शुरू कर सके है।
0: ग्रामीण बेना रे विकास रे वास्ते दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रियो है, क्योंकि अंडे माध्यमों बेना जो है वे समूह वणाइन बचत ऋण और अलग अलग व्यवसाय रो प्रशिक्षण अनमें दियो जावे है। जणू वणारी बेनारी आय भी बढ़े है और आय बढ़ेगा, खुद आत्मनिर्भर वेगा, अलग अलग हुनर आएगा, कौशल वेगा तो बेना में आत्मविश्वास भी विकसित वेगा सा।
1: बिल्कुल सा, देखो आज डिजिटल युग में सरकार अपनी बहनारे वास्ते डिजिटल साक्षरता भी देखो जोड़ी रही है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम रे माध्यमों वणा ने कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ऑनलाइन सेवा रो उपयोग भी देखो हिकई रहा है ताकि देखो अणु जो कही है जी बहना देखो ऑनलाइन व्यवसाय कर सके, डिजिटल भुगतान कर सके और ई गवर्नेंस सेवा रो भी लाभ उठाई सके।
0: और अना सब सरकारी प्रयासा रो परिणाम यो है कि आज जो अपनी बहना है वे शिक्षा, व्यापार, उद्योग, विज्ञान, तकनीक और प्रशासन जैसा जतरा भी नरे हरा क्षेत्र है अणा मैंने अपनी पहचान बनाई रही है और कौशल विकास खुद बेना आत्मनिर्भर वे रही है, आत्मविश्वासी वे रही है, सशक्त वे रही है, खुद अपना पेरा पे खड़ी वे रही है। और यो जो बेनारो कौशल विकास है यो केवल बेनारो विकास ही नहीं है बल्कि पूरो समाज और

0: तो गायत्री भाई सा देखो मन भावन राजस्थानी गीत हुणा सा और गीत रे लारे लारे हुण्यो संदेश। और अबे देखो कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा सा और अपनी बेना ने जानकारी देवा कि ग्रामीण विकास में नई पहल जो है जणी रे मई ने देखो विकसित भारत जी राम जी रे बारे में देखो अपनी बेना ने आप जानकारी देवा जो कि देखो भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन रे बारे में आप एक छोटी सी जानकारी देवा सा।
1: बिल्कुल सा, ग्रामीण विकास ने गति देवा रे वास्ते सरकार द्वारा भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन जो है या चली जा रही है। और अने मिशन रो उद्देश्य यो है कि जितना भी ग्रामीण युवा है, बेना है और जरूरतमंद परिवार है, वहां ने रोजगार और स्वरोजगार रा अवसर उपलब्ध कराना है। और अंडे अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और स्वरोजगार रे वास्ते वित्तीय सहायता और स्थानीय स्तर पे रोजगार बढ़ावा ने बढ़ावो देनो है सा।
0: बिल्कुल सा, यो मिशन ग्रामीण युवा ने वणारी योग्यता और रुचि रे अनुसार प्रशिक्षण देने रोजगार योग्य बनावे है। लारे लारे स्वयं सहायता समूह जो है छोटा उद्योग है, कृषि आधारित व्यवसाय है और ग्रामीण उद्यम जो है वणारे प्रोत्साहित करने आजीविका नया अवसर पैदा करे है। अण्यू गाँव देखो शहरी और पलायन कम वे है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वा भी देखो मजबूत बने है।
1: अने इस दिशा में ने भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन जो है या एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। अने मिशन रो उद्देश्य जो है वो सब जो भी अपना ग्रामीण बेना है, युवा है, अणा ने रोजगार रा अवसर देनो है। अणु गावा में ने रोजगार रा नवा नवा अवसर पैदा वेगा, लोगारी आय बढ़ेगा और शहरारी तरफ पलायन जो है वो कम वेगा सा।
0: बिल्कुल सा, विकसित भारत रो सपनो देखो केवल सरकार प्रयास पूरो नहीं वेगा बल्कि अणी में हर नागरिक री भागीदारी जरूरी है। अपनी शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और तकनीक के उपयोग ने बढ़ावो देनो है। यदि आप देखो अपने गांव ने आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है तो भारत निश्चित रूप एक विकसित राष्ट्र बनेगा।

0: विकसित भारत जी राम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन अंडो जो उद्देश्य यो है कि ग्रामीण क्षेत्र में ने रोजगार आजीविका और आधारभूत ढांचा ने मजबूत बनानो है, लारे लारे गांव में ने आजीविका रा स्थायी साधन विकसित करनो है, जल संरक्षण ग्रामीण सड़क सामुदायिक परिसंपत्तियां और अन्य विकास कार्य ने भी बढ़ावो देनो है सा।
1: बिल्कुल सा, और युवा और महिला वास्ते कौशल विकास और स्वरोजगार अवसर बढ़ावना है। ग्राम पंचायत और विकास योजना रा जो केंद्र है वणा में भी देखो जो स्थिरता है वो लावणो है। लारे लारे देखो सा, यो एक ऐतिहासिक ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन है जो मनरेगा री जगह ले रो है। आनी तहत ग्रामीण परिवार ने मिलवा वाला 100 दिनार रोजगारी गारंटी ने बढ़ाई ने 125 दिन तक करी दियो है।
0: और आनी जो विकसित भारत जी राम जी है अंडी कई कई विशेषता है वंडी भी बात बतावा अपनी बेना ने कि ग्रामीण परिवार रे वास्ते रोजगार गारंटी पे विशेष ध्यान देनो है, ग्राम पंचायत स्तर पे विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करनो है, जल सुरक्षा ग्रामीण बुनियादी ढांचा और आजीविका संवर्धन जुड़े कार्य ने प्राथमिकता देनी है, डिजिटल प्रणाली और सामाजिक अंकेक्षण रे माध्यम पारदर्शिता ने सुनिश्चित करना अंडी प्रमुख विशेषता है सा।
1: बिल्कुल सा, यह योजना केवल रोजगार देवा तक सीमित नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर जो गांव है, बेहतर बुनियादी सुविधा है, कौशल विकास और स्थानीय आर्थिक विकास रे माध्यम विकसित भारत रे लक्ष्य ने प्राप्त करवा में योगदान देवारी परिकल्पना भी करे है।
0: तो या तो अपनी बेना ने आपा बातचीत बते कि भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन कई वेवे और यो ग्रामीण विकास में ने किस तरह अपना योगदान देवे। अबे अपनी बेना ने पाछा मनोरंजन की दुनिया में ले चला और हुणावा प्यारो सो राजस्थानी गीत।

0: में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावे हे। अगर आप देखा तो युवा है जी माता बहना है क्षेत्र में आगे आवेला तो यो जो रोजगार है स्वरोजगार रूप में एक अच्छो सफल माध्यम बन सके है।
1: बिल्कुल सा, अगर आपानी बेना अगर आपनो स्वरोजगार शुरू करनो चाहे तो यो मसाला प्रसंस्करण उद्योग बहुत ही बढ़िया उद्योग है। अणु आपानी बेना आत्मनिर्भर वेगा, दो पया कमाएगा और खुद भी पैगा पे खड़ी वेगा सा।
0: हाँ सा,
1: तो या तो आपा जानकारी करी है बेना ने मसाला प्रसंस्करण उद्योग की, और अबे आप बेना ने हुनावा प्यारो सो मनभावन राजस्थानी गीत।

हमारी दिशा में एक सराहनीय प्रयास है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी ने आगे बढ़ाओ यो अणी योजना रो मूल संदेश है। तो या तो जानकारी करी अपनी बेना ने लाड़ो प्रोत्साहन योजना री अबे पाछो अपनी बेना ने मनभावन राजस्थानी गीत हुणावासा।

बहनें अभी सुन रही थी कार्यक्रम सहेलियां रिबाड़ी, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म हीरो से है।

0: अमित कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म थी लव स्टोरी।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म थी कटी पतंग। आइए अब सुनते हैं अमित कुमार, आशा भोसले और किशोर कुमार की मिलीजुली आवाज़ों में फिल्म कस्मे वादे का ये गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म आसपास के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विकास चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं नेशनल एआई प्रोग्राम के बारे में। भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम नेशनल एआई प्रोग्राम है, जिसे मुख्य रूप से इंडिया एआई मिशन के रूप में लागू किया जा रहा है। देश को वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर अग्रणी बनाने के लिए एक ऐतिहासिक सरकारी पहल है। मार्च 2024 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस व्यापक मिशन को मंजूरी दी थी। मेक इन इंडिया और मेक एआई फॉर इंडिया के दृष्टिकोण के साथ इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य भारत में एआई तकनीक को लोकतंत्रीकरण करना और इसे समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना है।

भारत में एआई के नीतिगत विकास की शुरुआत नीति आयोग के राष्ट्रीय एआई रणनीति नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉर ऑल दस्तावेज से हुई थी। सरकार ने माना कि एआई केवल एक उद्योग नहीं है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और शासन को बदलने का एक काइनेटिक इनेबलर है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। हाल ही में हुए वैश्विक आयोजनों जैसे नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में भारत ने दुनिया के सामने अपनी स्वदेशी एआई क्षमताओं का प्रदर्शन किया और ग्लोबल साउथ में जिम्मेदार एआई के उपयोग का नेतृत्व भी संभाला। इंडिया एआई मिशन के तहत पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इसे 7 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए अत्याधुनिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरिंग और जीपीयू की आवश्यकता होती है। शुरुआत में लगभग 10 जीपीयू का लक्ष्य था लेकिन भारत ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 38,000 से अधिक जीपीयू को ऑनबोर्ड किया है। भारतीय स्टार्टअप शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों को बेहद सस्ती दरों पर क्लाउड कंप्यूटरिंग के चिप की क्षमता उपलब्ध कराई जा रही है। गुणवत्तापूर्ण डेटा के बिना एआई का विकास असंभव है। इसके समाधान के लिए एआई कोष नामक राष्ट्रीय रिपोजिटरी बनाई गई है। अभी आप सुन रहे थे एआई नेशनल के बारे में जानकारी। कार्यक्रम था विकास चर्चा।

नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ।

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और

0: इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
1: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट है। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा

0: के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
1: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय है किसान भाइयों के कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: राम राम रेखा बैसा, राम राम।
1: राम राम गायत्री बैसा, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम हुणवा वाला संगला किसान भाई बेना ने आपनो
1: राम राम सा।
0: किसान भाइयों रे टाइम समय व्यो कृषि जगत रो और किसान भाइयों रे वास्ते भांत भांत्री जानकारी और राजस्थानी गीतारो पिटारो लेन हाजिर व्यां सा। और किसान री बात में किसान भाइयों ने जानकारी करावा कि समय रे लारे लारे यो जो बढ़तो लको न्यूनतम समर्थन मूल्य कई वेवे, तो आपनो जो भारत देश है यो एक कृषि प्रधान देश है, जटे आपने देश री आदिओ भी ज़्यादा आबादी अपनी आजीविका रे वास्ते खेती पे निर्भर है। और किसान भाइयों ने वणारी मेहनत रो सही मूल्य दिलावा रे वास्ते अणि बजार रा उतार चढ़ाव बचावा रे वास्ते भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य री व्यवस्था भी कीधी लगी है सर।
1: बिल्कुल सर, देखो समय रे साथ साथ बदलाव देखता थका रे, देखो

0: ठीक जो परिवेश है, बढ़ती लागत और किसान री जो आय है वने दुगुनी करवारो संकल्प ले लारे लारे जो देखो अने न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वणी में लगातार वृद्धि वे रही है। तो देखो सा आणी रे बारे में आपने किसान भाई ने बतावा कि यो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यो कई है। यो देखो सा न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गारंटी मूल्य है जो सरकार किसान भाई जो फसल ले लिए तय करे है। अगर बाजार रे महीने फसल री जो कीमत गिर जावे तो भी सरकार किसान री जो या तय मूल्य है वहीं पे फसल खरीदवार वास्ते बाध्य वे हिसाब।
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य रो उद्देश्य भी यो इस वे कि किसान भाई जो है संकटकालीन बिक्रियों ने बचावनो और वणा ने फसल विविधीकरण रे वास्ते प्रोत्साहित करनो है। और अणमे ने कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा यह सिफारिश भी वे कि अंतिम निर्णय जो है अणमे ने आर्थिक मामला री मंत्रिमंडलीय समिति जो है वे अंतिम निर्णय लेवे। और वर्तमान महीने सरकार रे द्वारा 22 अनिवार्य फसला जन महीने 7 अनाज 5 दाला 7 तिलहन और 3 जो है नकदी फसला और गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की भी घोषणा की दी है सर।
0: बिल्कुल सर, देखो सर समय रे लाल लाल सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वणी में लगातार बढ़ावा रे पाछे देखो नरी महत्वपूर्ण कारक भी है। जनेर मैंने देखो खेती री बढ़ती लागत समय रे साथ बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, सिंचाई है, ट्रैक्टर रो किरायो है और जो मानव श्रम जनी के देखो मजदूरी वे है वो भी महंगो वे तो जयरो। तो आना सभी चीजा ने मिले ने जो लागत आवे है वणी ने जोड़ी नयो जो मूल्य तय करो जावे है तो वो बाजार रे मैंने मांग और आपूर्ति वे वणी में देखो अणीरी जो भरपाई वे वा आसानियों वे सके। जणी में देखो देश की जो फसला है वणी में कमी वे जावे जैसे कि आपा दलहन देखी रहा तिलहन है तो वणारो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो अधिक बढ़े ने किसान भाई वणी में लगावाऊँ और वणे उगावर वास्ते भी देखो प्रेरित करो जावे है।
1: बढ़तो लोगों जो यो न्यूनतम समर्थन मूल्य है अणु किसान भाइया ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने नरो हारो लाभ व्यवसा और समय रे लारे वेवा वाली ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में ने जो बढ़ोतरी है अणु ग्रामीण भारत री तस्वीर बदलवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बाजार री जो कीमता है अणमे ने अचानक गिर जावा रे डर अबे किसान भाइया ने मन में यो नहीं रेवे कि जणू की वणा ने एक मानसिक और आर्थिक सुरक्षा जो है वो अणी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिली जावे है। लारे लारे जत्र भी किसान भाई है वणा ने यो पतो वेवे कि वणारी फसला रो हाउ दाम वणा ने मिलेगा तो वे उन्नत बीज आधुनिक कृषि यंत्र जिस तरह की डीप ड्रिप सिंचाई है कल्टीवेटर है और बेहतर तकनीका में निवेश करवाऊ हिचकिचावे नहीं है सर।
0: बिल्कुल सर, देखो खेती बाड़ी में वे वाली जो अच्छी कमाई है वो सीधा तौर पर ग्रामीण बाजार महीने देखो जईने वणा ने मजबूती प्रदान करे। ट्रैक्टर की बिक्री है, स्थानीय व्यापार है, घरेलू उद्योग है जैसे कि मोमबत्ती बनाणो है, साबुन उद्योग है या पचे डेयरी पालन है वणी में भी देखो निवेश जो है बढ़ रो है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रे प्रोत्साहन रे कारण ही आज अपने देश रे महीने खाद्यान्न जी मामला है न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि जो अधिशेष री स्थिति में भी आपा देखी सका। हाँ
1: तो यो समय रे लारे जो बढ़तो लोगो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यो केवल एक सरकारी आंकड़ो नहीं है बल्कि यो अपने अन्नदातारी जो अपने किसान भाई है वणारी पसीना और मेहनतों किया जावा वालों सम्मान है। क्योंकि बदलती लकी जो तकनीका है कृषि सुधारा रे साथ में मिलन बढ़तो लको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो देश भर रा जितना भी किसान भाई है वणा ने आत्मनिर्भर बनावे और सशक्त बनावारी दिशा में एक बेहद मजबूत कदम साबित वे रो सा। तो या तो किसान भाइया ने किसान री बात में जानकारी करे कि समय रे लारे बढ़तो लको न्यूनतम समर्थन मूल्य कई वे और किसान भाई अंडो किस तरह लाभ ले सके सा। तो कार्यक्रम में आया हाँ सा और किसान भाई भी आपने नवा नवा गान भजा ये आपा गीत हुनावा तो क्यों नहीं किसान भाई यारो मनोरंजन करावा और हुनावा प्यारो सो गीत।
0: बिल्कुल हुनावा सा।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, फटे फटे है पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: दी, ये देख कैसे?
1: हैप्पी बर्थडे बॉय।
4: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर,
1: हमेशा शॉपिंग।
5: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: I know ma,
7: RBI कहता है,
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: तो गायत्री पैसा देखो मन भावन राजस्थानी गीत होने सा और गीत रे लारे लारे होने संदेश। अब कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा सा और अपने किसान भाई ने जानकारी देवा हाँ कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो कई है और वनेरी उपयोगिता और लाभ अपने किसान भाई कई तरीकों उठाई सके सा।
10: बिल्कुल सा, किसान कार्ड जो है अंडे किसान क्रेडिट कार्ड भी कहवा सा अपने देश में ने किसान भाई अरे वास्ते यो एक बेहद वरदान साबित वेवा वाली या जो है किसान कार्ड योजना है। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड रे सहयोग या शुरू की दी लगी या योजना जो है या किसान भाइयों ने बनारी खेतीबाड़ी पशुपालन और मछली पालन की जरूरत ने पूरा करवा रहे वास्ते बहुत ही कम ब्याज दर पे आसानियों अणु लोन भी उपलब्ध करावे। पहला किसान भाइयों ने खाद बीज और डीजल खरीदवा रहे वास्ते गाँव रा साहूकार या ब्याज खुरारे पास में जानो पड़तो हो और वे ऊंचा ब्याज वसूलता हा, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड जो है अणी समस्या ने हमेशा रे वास्ते खत्म कर दी दो है। अब यो जो कार्ड है अबे रूपे एटीएम कार्ड रे रूप में मिले है, जणो आप सीधो कणी भी एटीएम मशीन में या दुकान पे जाइन इस्तेमाल कर सको सा।
9: बिल्कुल सा, देखो सा किसान कार्ड री जो उपयोगिता और लाभ री बात करा तो यो कार्ड सिर्फ एक बैंक खातो नहीं है बल्कि यो किसान रो एक सच्चो साथी है। अणी री उपयोगिता री बात करा तो देखो दुनिया रो सबो सस्तो लोन जणी रे मैंने ब्याज में भारी छूट मिले है। किसान कार्ड रो सबो बड़ो फायदो अणी में देखो बेहद जो कम ब्याज दर है अणी पे देखो लोन पे सामान्य ब्याज पे दर जो आपा दर है वणी 9% तक वे है, लेकिन सरकार जत्री भी किसान भाई है वणी में 2% तक री छूट देवे है जणी रे मैंने यो 7% तक रह जावे है। अगर कोई किसान भाई आपने लोन रो जो लेन देन बिल्कुल सही तरीकों रखेगा और टेम पे या टेम पहली पैसों बैंक तक चुकाई देला तो सरकार वणे 3% तक री अतिरिक्त छूट देवेगा, यानी वणा ने 4% तक जो है सालाना ब्याज पे पैसों मिलेगा।
10: यो तो बहुत ही बढ़िया है सा, और अणु कहिए कि खेतीबाड़ी रा खर्चा भी आसानियों वे जाएगा अणी कार्ड रे मदद किसान भाई सही समय पे उन्नत किस्म रा बीज जैविक और रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयाँ खरीद सकेगा। लारे लारे मशीनरी रो खर्चो जिस तरह की ट्रैक्टर रो किरायो है, कल्टीवेटर रोटावेटर रो खर्चो, सिंचाई रे वास्ते डीजल या बिजली रो बिल चुकावा में यो पयो जो है वो काम आ जाएगा, और फसल री कटाई थ्रेसिंग अनाज भरवा रे वास्ते बोरिया रो खर्च और फसल ने मंडी तक पहुँचावा रो जो किरायो है यो भी अणी कार्ड अणु पैसो निकालियो जाई सके सा।
9: बिल्कुल सा गायत्री भाई सा, देखो केवल खेती ही नहीं बल्कि पशुपालन में भी देखो यो बहुत ही उपयोगी है। अबार देखो सरकार किसान कार्ड रो दायरो बहुत ही बढ़ाई दीदो है। अबार अणी रो लाभ केवल फसल उगावा तक सीमित नहीं है, डेयरी है पशुपालन है वणाई में भी देखो नरो फायदो मिल रो है। अगर आप गाय भैंस भेड़ या बकरी पालन करता हो तो वणारे चारा री पक्का शेड है, वणारे निर्माण और पशु वाली जी दवाई है, वणी रे वास्ते भी देखो बहुत सारो जो खर्चो है वो अणी में देखो अपने किसान भाई ने मिलेगा।
10: बिल्कुल सा, और किसान भाइयों ने लारे लारे किसान कार्ड धारक जो है वणा ने बैंक री तरफ वो एक सुरक्षा कवच भी मिले है। अगर कहीं भी दुर्घटना में ने मृत्यु या पूर्ण विकलांगता री स्थिति में ने 50,000 रुपया तक और आंशिक विकलांगता वेवा पे 25,000 रुपया तक रो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमो भी अनमें ने कवर मिले है सा।
9: बिल्कुल सा, देखो यो कार्ड कई तरीकों काम करे तो अपने किसान भाई ने बतावा कि आपकी जमीन री जहाँ मात्रा है आपकी फसल रे प्रकार है बैंक रे जी आपरे व्यवहार ने देखिन बैंक एक लिमिट तय करे है जणी में 1,00,000 है 2,00,000 है आप 5 साल तक अणी में लिमिट रे जो महीने रिन जदी भी चाहो पैसा निकालने और जमा कर सको हो।
10: तो यो जो किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किसान भाई रे वास्ते बहुत ही बढ़िया कार्ड है, और अणी में कसा कसा दस्तावेज छावे जंडी बात बतावा, अणी में जमीन रा दस्तावेज आधार

0: कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, ये किसान भाई ने जरूरत दस्तावेज में छापे हो। और किसान भाई अपना नजदीकी कहीं भी सरकारी बैंक या पचे सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जैन अंडे वास्ते आवेदन कर सके। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है यो आज का दौर में किसान भाई ने आर्थिक मजबूती रो सब बड़ो हथियार है और यो सही समय पर तैयारी कमी ने दूर करे है। जणू किसान भाई वना कहीं भी चिंताओं अपनी फसल और पशु वाली देखभाल भी कर सके सा।
1: बिल्कुल सा,
0: तो या तो जानकारी भी किसान भाई रे वास्ते किसान कार्ड री उपयोगिता कई कई वेवे। तो अबे किसान भाई ने पाछो मनोरंजन करावा, मनोरंजन की दुनिया में ले चला और हुणावा प्यारो सो राजस्थानी गीत।

पैसा रेल बना दू यो घणो ही मनभावन राजस्थानी गीत जो है किसान भाइया ने हुणायो सा नरिहारी जानकारियां भी करे और अबे घड़ी री तरफ नाला तो कार्यक्रम विदारो टेम वेग्यो सा चाला सा राम राम सा।

0: किसान भाई अभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत आकाशवाणी का, ये उदयपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल हिस्सा ले रहे हैं। रेल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी

0: साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
1: इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेजा है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C-295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण के देश में बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी है। इन स्पेस ई केंद्र सरकार के सहयोग से गुजरात के खोराज में अत्याधुनिक स्पेस पार्क विकसित करेगा। इससे उन्नत तकनीकी सुविधाएं जैसे जलवायु परीक्षण कक्ष, द्रव्यमान गुण मापन प्रणाली, चुंबकीय क्षेत्र परीक्षण और पृथ्वी अवलोकन से जुड़ी सुविधाएं शामिल होंगी। इसका उद्देश्य नवाचारों को अंतरिक्ष से जुड़े उद्योगों सहायता प्रदान करना है। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। यह टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के प्रसारण लेकर शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5 बजे हैं, हमारे सांध्यकालीन प्रसारण आरंभ होते हैं। सबसे पहले हमारे युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है उनका दैनिक रोचक और मनोरंजक कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं, युववाणी कार्यक्रम हमारे मीडियम वेव चैनल आकाशवाणी उदयपुर के साथ ही हमारे FM रेडियो लेक सिटी के श्रोता भी सुनेंगे।

0: ओ लिसनर्स, गुड इवनिंग। दिल से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम युवाओं की आवाज, और मैं हूं आपकी होस्ट माहिन खान। और आज मेरे साथ है मेरी को होस्ट
1: नेहल राठौर।
0: लेकर आए हैं जोश, जुनून और नई सोच की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

0: दोस्तों कहते हैं किसी देश की असली पहचान उसकी संस्कृति होती है। जहाँ मिट्टी की खुशबू में बसती हो पहचान, जहाँ संस्कारों से बनता है हर इंसान, ऐसे ही भारत की बात करेंगे 2047 की।
1: 2047 यानी आज़ादी के 100 साल। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे या अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर चलेंगे?
0: बिल्कुल सही कहा माहिन, कल्चरल रिफॉर्म्स का मतलब सिर्फ परंपराओं को बचाना नहीं बल्कि उन्हें समय के साथ इन्वॉल्व करना है।
1: जैसे हमारी भाषाएं, आज के टाइम में इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2047 तक हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होगी।
0: हाँ, इमेजिन करो स्कूल्स में बच्चे हिंदी, संस्कृत या अपनी मातृभाषा में कॉन्फिडेंटली पढ़ाई करें तो हम सभी के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा।
1: और बात करें फेस्टिवल्स की, आजकल हम फेस्टिवल्स को सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित कर देते हैं।
0: सही कहा, कल्चरल रिफॉर्म्स में ये ज़रूरी है कि हम त्योहारों के असली मीनिंग को समझें, यूनिटी, हैप्पीनेस और टुगेदरनेस को।
1: एक और ज़रूरी पॉइंट, हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स जैसे डांस, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट्स, ये हमारी पहचान है।
0: एब्सोल्युटली माहिन, 2047 तक हमें इन आर्टिस्ट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना होगा ताकि दुनिया मेड इन इंडियन कल्चर को भी सेलिब्रेट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रेस्पेक्ट। हमारी संस्कृति सिखाती है एल्डर्स का सम्मान, नेचर की केयर और हार्मोनी में रहना।
1: बिल्कुल सही नेहल, अगर ये वैल्यूज हम अपनी डेली लाइफ में लाएं तो इंडिया सिर्फ डेवलप्ड नेशन नहीं बल्कि वैल्यू बेस्ड नेशन बनेगा।
0: तो दोस्तों, इंडिया 2047 का सपना सिर्फ साकार नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है,
1: क्योंकि जब कल्चरल स्ट्रांग होगा तभी एक नेशन ट्रूली स्ट्रांग बनेगा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: अब हम बात करेंगे उस भारत की जो सिर्फ आजाद ही नहीं बल्कि विकसित आत्मनिर्भर होगा, यानी इंडिया 2047। लेकिन नेहल, क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस सपने की जड़ें कहाँ हैं? नेहल, ये सपना आज का नहीं, ये सपना उन वीरों का है जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आजादी दिलाई। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनका जन्म आज ही के दिन 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। बचपन से ही बिस्मिल जी बहुत तेज, साहसी और देशभक्त की भावना से भरे हुए थे।
1: सही कहा, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी और उर्दू में प्राप्त की। वे पढ़ाई के साथ साथ देश की आज़ादी के लिए भी सोचते रहते थे। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और वे भारतीयों को अत्याचार करते थे। इन अत्याचारों को देखकर बिस्मिल जी के मन में क्रांति की भावना जागी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया।
0: और मैं बताना चाहूँगी कि बिस्मिल साहब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे और इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कार्य किए। उनमें सबसे प्रसिद्ध घटना काकोरी ट्रेन रॉबरी है, जो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और इस घटना में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया था ताकि उस धन का उपयोग आज़ादी की लड़ाई में किया जा सके।
1: इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने बिस्मिल जी के उनके साथियों को पकड़ लिया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई।
0: और राम प्रसाद बिस्मिल केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक महान कवि भी थे। उन्होंने कई देशभक्ति कविताएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध कविता सर

0: फरोशी की तमन्ना आज भी लोगों के जोश भर देती है।
1: बिल्कुल सही कहा दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन हमें सिखाता है कि देश के लिए त्याग और बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा।

0: दोस्तों, जहां एक तरफ हम 2047 के सांस्कृतिक भारत की हम बात कर रहे थे, वहीं अब बात करते हैं उन युवाओं की जो आज से उस भविष्य को बना रहे हैं, यंग टेक्नोक्रेट्स जैसे विनोद पाटिल और साथी सावला।
1: विनीत पाटिल, जिसने अपने छोटे से आइडिया को बड़ा ब्रांड बना दिया। विनीत पाटिल और पाटिल काकी की इंस्पायरिंग जर्नी।
0: दोस्तों, पाटिल काकी नाम सुनते ही घर के बने खाने के स्वाद की याद आ जाती है ना?
1: बिल्कुल यही। यह एक मुंबई बेस्ड होम स्टाइल स्नैक ब्रांड है, जिसे विनीत पाटिल ने अपनी माँ गीता पाटिल के साथ मिलकर शुरू किया।
0: और खास बात ये है कि यहाँ आपको मिलते हैं ट्रेडिशनल और हाइजेनिक महाराष्ट्रियन स्नैक्स, जैसे चकली, चिवड़ा, पूरणपोली और मोदक, यानी प्योर घर का टेस्ट। लेकिन कहानी यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है।
1: जी हाँ, विनीत ने अपनी स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी माँ के छोटे से होम बेस्ड बिजनेस को सपोर्ट कर सके।
0: और फिर आया ईयर 2020 का लॉकडाउन, जहाँ कई बिजनेस रुक गए, वही विनीत ने इसे अपॉर्चुनिटी बना दिया
1: और उन्होंने बिजनेस को डिजिटल बना दिया। वेबसाइट बनाई, ऑनलाइन ऑर्डर शुरू किए और देखते देखते ही ये होममेड स्नैक्स हजारों लोगों तक पहुंच गए।
0: बिल्कुल सही कहा माइन, यही होती है यंग टेक्नोक्रेट की सही सोच, प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना।
1: निहल, और फिर उनकी मेहनत उन्हें लेकर गई एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, शार्क टैंक इंडिया सीजन 2, जहां उन्होंने इन्वेस्टर्स पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल से 40 लाख की फंडिंग हासिल की सिर्फ 4% इक्विटी के बदले।
0: सोचिए जरा, कुछ लाख के छोटे से रेवेन्यू से शुरू हुआ
1: ताकि वो अपनी माँ के छोटे से होम बेस्ड बिजनेस को सपोर्ट कर सके।
0: और फिर आया ईयर 2020 का लॉकडाउन, जहाँ कई बिजनेस रुक गए, वही विनीत ने इसे अपॉर्चुनिटी बना दिया।

0: और उन्होंने बिजनेस को डिजिटल बना दिया, वेबसाइट बनाई, ऑनलाइन ऑर्डर शुरू किए और देखते देखते ही ये होममेड स्नैक्स हजारों लोगों तक पहुंच गए।
1: बिल्कुल सही कहा माइन, यही होती है यंग टेक्नोक्रेट की सही सोच, प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना।
0: निहल, और फिर उनकी मेहनत उन्हें लेकर गई एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, शार्क टैंक इंडिया सीजन 2, जहां उन्होंने इन्वेस्टर्स पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल से 40 लाख की फंडिंग हासिल की सिर्फ 4% इक्विटी के बदले।
1: सोचिए जरा, कुछ लाख के छोटे से रेवेन्यू से शुरू हुआ ये सफर आज करोड़ों में टर्नओवर तक पहुंच चुका है।
0: और पाटिल काकी आज पूरे भारत में घर के स्वाद को पहुंचाने का सपना पूरा कर रहे हैं।
1: माहिन इनकी कहानियों में सिखाती कि सक्सेस के लिए बड़े रिसोर्सेज नहीं बल्कि बड़ी सोच जरूरी है, और जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन साथ आ जाए तो कमाल होना तय है।
0: तो दोस्तों, ये थे विनीत पाटिल, जिन्होंने अपनी माँ

0: और ये सफर आज करोड़ों में टर्नओवर तक पहुंच चुका है।
1: और पाटिल काकी आज पूरे भारत में घर के स्वाद को पहुंचाने का सपना पूरा कर रहे हैं।
0: माहिन इनकी कहानियों में सिखाती कि सक्सेस के लिए बड़े रिसोर्सेज नहीं बल्कि बड़ी सोच जरूरी है, और जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन साथ आ जाए तो कमाल होना तय है।
1: तो दोस्तों, ये थे विनीत पाटिल, जिन्होंने अपनी माँ लिया,
0: वहाँ से मिली फंडिंग और गाइडेंस ने इनके बिजनेस को एक नई पहचान दी, और आज पाटिल काकी जो है पाटिल काकी इकॉम वेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत तेजी से ग्रो कर रहा है।
1: दर्शन सावला की खास बात यह है कि उन्होंने ट्रेडिशनल होममेड फूड को मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटेजी और ई कॉमर्स के साथ कनेक्ट किया, यानी कल्चर टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू सक्सेस। यही है आज के यंग टेक्नोक्रेट्स की असली कहानी।
0: तो दोस्तों, विनीत पाटिल और दर्शन सावला की ये जो जर्नी है हमें सिखाती है कि टीम वर्क, इनोवेशन और फैमिली सपोर्ट से ही सब कुछ पॉसिबल है।
1: और अगर आइडिया स्ट्रांग हो तो छोटे से घर से शुरू हुआ बिजनेस भी पूरे देश में अपनी पहचान बना सकता है।

0: और क्रिएटिव बनाता है। और इसी के साथ आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। हर साल 11 जून को मनाया जाता है। यह दिन बच्चों और सभी लोगों के जीवन में खेल के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई थी
1: ताकि दुनिया भर में यह संदेश फैलाया जा सके कि खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने, विकास और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है।
0: खेल बच्चों के फिजिकल, मेंटल, सोशल विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। जब बच्चे खेलते हैं तो उनका शरीर मजबूत होता है, दिमाग तेज होता है और वे दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। आज के समय में कई बच्चे मोबाइल और टीवी में ज्यादा समय बिताते हैं जिससे उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले का उद्देश्य यह भी है कि बच्चों को बाहर जाकर खेलने के लिए प्रेरित किया जाए। यह दिन माता पिता, शिक्षकों और समाज को याद दिलाता है कि बच्चों को खेलने का पूरा समय और अवसर देना चाहिए।
0: और इस दिन स्कूल संस्था और सामुदाय में विभिन्न स्पोर्ट्स एक्टिविटी आयोजित की जाती है जैसे दौड़, फुटबॉल, कबड्डी और अन्य खेल। और ऐसे ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी बच्चों में खुशी और उत्साह बढ़ाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। ये दिन हमें सिखाता है कि खेल जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। यह न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों खेल से शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी प्रसन्न रहता है।

वो दिन जब ना कोई टेंशन थी ना कोई भाग दौड़, बस खेल मस्ती और दोस्तों के साथ बिताए सुनहरे पल थे। खेल सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है जो हमें खुश, स्वस्थ

विज्ञान धारा योजना को सरल भाषा में समझें तो ये एक ऐसी सरकारी पहल मानी जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में आने वाली बाधाओं को दूर करना है और लोगों को बेहतर जीवन जीने का अवसर देना है। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से गरीब, कमजोर और जरूरतमंद वर्गों पर ध्यान दिया जाता है।

0: ताकि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियाद सुविधाओं से वंचित न रहें।
1: इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि लोग आर्थिक और सामाजिक कारणों से पीछे रह जाते हैं, उनके रास्तों में रुकावटें कम किया जाए। जैसे कई बार छात्रों को पढ़ाई के लिए पैसे की कमी होती है, किसानों को साधनों की कमी होती है या छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं मिलती। ऐसी स्थितियों में यह योजना सहायता प्रदान करती है।
0: और इस योजना के द्वारा सरकार विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे फाइनेंशियल हेल्प, ट्रेनिंग, जागरूकता प्रोग्राम, और इससे लोगों को न केवल तुरंत मदद मिलती है बल्कि वे इंडिपेंडेंट बनते हैं। उदाहरण के तौर पर बेरोजगार युवाओं का कौशल देकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जाता है और जरूरतमंद परिवार को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन की स्थिति सुधारी जाती है।
1: इस योजना का महत्वपूर्ण पहलू ये भी है माहिन कि यह समाज में समानता यानी इक्वलिटी को बढ़ावा देती है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग या क्षेत्र से हो। इससे सामाजिक असमानता कम होती है और देश का समग्र विकास संभव हो पाता है। तो माहिन, बात करते हैं इसके तीन मुख्य कंपोनेंट्स की।
0: और पहला विज्ञान और संस्था और मानव क्षमता निर्माण यानी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंटेड लोगों को मजबूत करना।
1: और दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे बेसिक रिसर्च से लेकर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तक को बढ़ावा दिया जाता है।
0: और तीसरा इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट यानी रिसर्च को प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस में बदलना।
1: जी हाँ दोस्तों, इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य है देश के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाना
0: और स्टेम फील्ड्स में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ाना और वुमेन साइंटिस्ट को एम्पावर करना भी इसका अहम हिस्सा है।
1: इसके अलावा स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स असमानता कम होती है और देश का समग्र विकास संभव हो पाता है। तो माहिन, बात करते हैं इसके तीन मुख्य कंपोनेंट्स की।
0: और पहला विज्ञान और संस्था और मानव क्षमता निर्माण यानी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंटेड लोगों को मजबूत करना।
1: और दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे बेसिक रिसर्च से लेकर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तक को बढ़ावा दिया जाता है।
0: और तीसरा इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट यानी रिसर्च को प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस में बदलना।
1: जी हाँ दोस्तों, इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य है देश के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाना
0: और स्टेम फील्ड्स में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ाना और वुमेन साइंटिस्ट को एम्पावर करना भी इसका अहम हिस्सा है।
1: इसके अलावा स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स

0: तीसरा इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, यानी रिसर्च को प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस में बदलना।
1: जी हाँ दोस्तों, इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य है देश के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाना
0: और स्टेम फील्ड्स में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ाना और वुमेन साइंटिस्ट को एम्पावर करना भी इसका अहम हिस्सा है।
1: इसके अलावा स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स

0: और बाद में उन्होंने बेनिंगटन कॉलेज से एक्टिंग की पढ़ाई की और कई स्टेज परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी पहली फिल्म भी लिविंग इन द ऑब्लिविन 1995, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली द स्टेशन एजेंट 2003 में जो रिलीज हुई थी उससे मिली। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया जैसे एल्फ, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, प्रिंस कैस्पियन और एक्स मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, और उनकी एक्टिंग का जादू देखने को मिला और अवार्ड विनिंग फिल्म्स 3 बिलीबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिजरी में भी हुआ।
1: लेकिन अगर उनके सबसे आइकॉनिक रोल की बात करें माहिन, तो वो है ट्रायन लैनिस्टर।
0: HBO की फेमस सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में उनके इस किरदार ने उन्हें वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही बड़ी पहचान दिलाई।
1: इस रोल के लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिले जैसे एमी अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। और इनकी खास बात ये भी थी कि ये टेलीविजन के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में भी शामिल थे।
0: और हमें सिखाते हैं कि टैलेंट और डेडिकेशन के दम पर कोई भी अपनी पहचान बना सकता है। और आज उनके बर्थडे पर हम उन्हें यही कहेंगे, कीप इंस्पायरिंग द वर्ल्ड।
1: तो दोस्तों, अभी हमने बात करी पीटर डिंकलेज की इंस्पायरिंग जर्नी की, और आज का दिन खास इसीलिए भी है क्योंकि ऐसे ही एक और वर्सेटाइल एक्टर का भी आज जन्मदिन है, जिनकी पहचान सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि म्यूजिक और कॉमेडी में भी है।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ह्यू लॉरी की, जिन्होंने अपने टैलेंट से हर फील्ड में कमाल किया। यानी उनका आज ही के दिन यानी 11 जून 1959 को इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ, और वे एक शानदार एक्टर, कॉमेडियन और म्यूजिशियन हैं।
1: और इनकी शुरुआत हुई कॉमेडी से, जब उन्होंने साइफन फ्राई के साथ मिलकर फ्राई एंड लॉरी की फेमस कॉमेडी डुओ बनाई।
0: इन दोनों ने कई पॉपुलर शोज के साथ काम किया जैसा बिट ऑफ फ्राई लॉरी और जीव्स एंड वोस्टर।
1: इसके अलावा उन्होंने ब्लैक क्लेडर जैसी क्लासिक कॉमेडी सीरीज में भी अपनी एक्टिंग का शानदार जलवा दिखाया।
0: लेकिन ह्यू लॉरी को ग्लोबल फेम मिला उनकी आइकॉनिक रोल डॉक्टर ग्रिगोरी हाउस से, और फॉक्स की मेडिकल ड्रामा सीरीज हाउस में उन्हें इस किरदार के लिए उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई।
1: इस रोल के लिए उन्होंने कई अवार्ड जीते जिनमें से थे ग्लोबल ग्लोब अवार्ड, और इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे खास बात कि वो समय टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में ये भी शामिल थे।
0: और हाउस के बाद भी उन्होंने अपने टैलेंट का जादू जारी रखा, जैसे द नाइट मैनेजर में उनकी शानदार परफॉर्मेंस और HBO की वीप में भी उनके रोल को काफी सराहना मिली।
1: लेकिन ह्यूज लॉरेन सिर्फ एक एक्टर ही नहीं माइन, बल्कि वो एक अमेजिंग म्यूजिशियन भी थे, जिन्होंने ब्लूज एल्बम्स जैसे लेट देम टॉक एंड डिडंट इट रेन रिलीज किए, जिन्हें काफी पसंद किया गया।
0: तो दोस्तों, ह्यू लॉरी एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने एक्टिंग, कॉमेडी और म्यूजिक हर फील्ड में अपनी अलग पहचान बनाई, और यही वर्सेटैलिटी उन्हें खास बनाती है।

दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शानदार एक्टर की जिनकी एक्टिंग ने हर किरदार को यादगार बना दिया, पीटर डिंकलेज। इनका जन्म 11 जून 1969 को न्यू जर्सी यूएसए में हुआ था और आज वो हॉलीवुड के सबसे रेस्पेक्टेड एक्टर्स में गिने जाते हैं और उनकी जर्नी भी उतनी ही इंस्पायरिंग है। उन्होंने बचपन से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी स्कूल प्ले द वेलवेट रैबिट से।

0: वो भी ऐप से। फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंस्पायरिंग पर्सन की जिन्होंने अपने हिम्मत और मेहनत से दुनिया को दिखा दिया कि सपनों के आगे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। हम बात कर रहे हैं पैरा बैडमिंटन की विश्व चैंपियन मानसी जोशी की। भारत की एक प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत से देश का नाम रोशन किया। मानसी जोशी का जन्म आज ही के दिन 11 जून 1989 को मुंबई में हुआ था। वे बचपन से ही पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छी थी। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद एक कंपनी में भी काम किया
4: और साल 2011 में एक रोड एक्सीडेंट में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। यह उनके लिए बहुत कठिन समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कृत्रिम पैर के सहारे उन्होंने फिर से चलना सीखा और अपने जीवन में नई दिशा दी।
3: और इसके बाद उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और धीरे धीरे इसमें माहिर हो गई। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्ट लिया, उनमें उन्होंने कई मेडल्स और पदक जीते। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2019 में आई जब उन्होंने BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2019 में स्वर्ण पदक जीता।
4: मानसी जोशी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार भी मिले। वे न केवल एक खिलाड़ी है बल्कि एक प्रेरणा भी है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इंसान में हिम्मत और विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती।
3: मानसी जोशी का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार माननी नहीं चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।
4: दोस्तों, बात करते हैं भारत के महान तैराक और लंबी दूरी की तैराकी के लिए

0: प्रसिद्ध खिलाड़ी मिहिर सेन की। उन्होंने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया।
1: मिहिर सेन का जन्म 16 नवंबर 1930 को पुरुलिया में हुआ था। वे बचपन से ही मेहनती और लगनशील थे। उन्होंने कानून लॉ की पढ़ाई की और वकील बने, लेकिन उनका असली जुनून तैराकी था।
0: उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1958 में आई, जब उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बने। यह काम बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इस समुद्र में ठंडा पानी, तेज लहरें और लंबी दूरी जैसी चुनौतियां भी होती हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी, मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इसके बाद मीर सेन ने कई और बड़े कारनामे किए। उन्होंने दुनिया के 5 प्रमुख समुद्र यानी 5 ओशंस को पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनकी इन सफलता के कारण उन्हें वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर भी कहा गया। भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े अवार्ड से सम्मान किया। और मीर सेन का निधन 11 जून 1990 को हुआ, लेकिन उनकी उपलब्धियां आज भी लोगों को प्रेरित करती है। अंत में मीर सेन का जीवन हमें यह सिखाता है कि मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से इंसान किसी भी मुकाबले को पार कर सकता है।
5: अब बात करते हैं आज के स्पोर्ट्स अपडेट की। आज से फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत

0: हो गई है। यह टूर्नामेंट यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। भारत में इसके लिए खास एक्सपर्ट पैनल तैयार किया गया है, जिसमें भाईचंग भूटिया और अदिति चौहान जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
1: गोल्फ में कैनेडियन ओपन 2026 चल रहे हैं, जिसमें बड़े खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। टेनिस, साइकिलिंग, बास्केटबॉल जैसे और एथलेटिक्स में कई इंटरनेशनल मुकाबले भी जारी हैं।
0: और हमारी नेक्स्ट अपडेट है, आज अलग अलग लीग्स और सीरीज में लगभग 16 क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं, ओडीआई और टी20 में। इसमें बांग्लादेश वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ओडीआई जैसे बड़े मैच भी आज हो रहे हैं।

0: हर दिन कुछ अच्छा या बुरा घटता है और यही घटनाएं आगे चलकर इतिहास बन जाती है। कई सफलता की कहानियां दर्ज है तो कई संघर्ष और बलिदान की मिसालें। तो हम बात करते हैं 11 जून का दिन भारतीय और विश्व इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है।
1: भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के अनुसार सन 1964 में उनकी अस्थियों की भस्म को उनकी मृत्यु के बाद आज ही के दिन पूरे देश में बिखेरा गया था।
0: और सन 1866 में आज ही के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। और 2008 में ब्रह्मोस सुपर सैनिक मिसाइल को आज ही के दिन आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। और हम बात करते हैं 1935 में एडविन आर्मस्ट्रांग द्वारा पहली बार सार्वजनिक रूप में FM रेडियो का प्रसारण अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया। और हम बात करेंगे 1903 की, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज के पेटेंट का आवेदन किया था, हालांकि ये आवेदन खारिज हो गया था। एक साल बाद दोनों ने अमेरिका को ओहियो पेटेंट अटॉर्नी से आवेदन करवाया गया। और 1981 में भारत ने अपना पहला संयार उपग्रह INSAT-1A लॉन्च किया।
1: अब बात करते हैं आज के शेयर मार्केट की। पहले बात करते हैं उसमें निफ्टी 50 की, ये पहुंचा है 23,161.60 पर, जिसमें 53.35 अंकों से गिरा। सेकंड 20 SE सेंसेक्स, जो रहा 73,832.55 के स्तर पर, और इसमें भी 150.63 अंकों से गिरा। और अगर हम बात करें करेंसी की, तो 1 US डॉलर जो रहा हमारा 95.73।

0: दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं थी आपकी रेडियो दोस्त नेहल और मेरे साथ
1: माहिम खान।
0: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: हमारे युवा श्रोता अभी सुन रहे थे अपना दैनिक और रोचक कार्यक्रम, मनोरंजन के से भरपूर कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं, इसका प्रसारण हमारे मीडियम वेव चैनल आकाशवाणी उदयपुर के साथ साथ एफएम रेडियो लेक सिटी पर भी किया जा रहा था। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
2: We attach high importance to the welfare and well-being.
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमरीकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30%

0: एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हो रहे हैं। ये समय है फिल्मी गीतों के माध्यम से आपके मनोरंजन का। आज संध्या के ढलते सूरज के साथ हम लेकर आए हैं कुछ मन को सुकून देने वाले मधुर गीत।

फिल्म संगीत के इस मधुर सुहाने सफर का जो पहला पड़ाव यानी पहला गीत हमने आप तक पहुंचाया, फिल्म चांदनी से इसे हमने लिया। आवाजें थी लता मंगेशकर और बाबला मेहता की, शिव हरी का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत।

दोस्तों, ये गाना हमने लिया फिल्म यस बॉस से, आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की। इसे लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया जतिन ललित ने।

अगला गीत है फिल्म अरमान से। सुनिधि और सोनू निगम की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल, और इसे संगीतबद्ध किया शंकर एहसान लॉय ने।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से।

इश्क वाला लव, ये गाना हमने लिया फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। इसे गाया सलीम मर्चेंट, नीति मोहन ने, और इसे संगीतबद्ध किया विशाल शेखर ने, गीत लिखा अन्विता दत्त ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं। इसे हमने लिया है फिल्म कबीर सिंह से।

संगीत विशाल मिश्रा का, आवाज अरमान मलिक की है, इरशाद कामिल के बोल और फिल्म कबीर सिंह।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं खत्म होता है। आप आकाशवाणी उदयपुर के साथ हैं। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में जयपुर अजमेर केंद्र से हम सुनेंगे सबसे पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। संध्या 6:40 पर सुनिएगा जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल के मंत्र के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलेवर में बदलाव का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, दो सीटें भाजपा और एक कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। और राज्य में कल से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

0: समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार देने को सरकार की प्राथमिकता बताया गया। साथ ही महिला नेतृत्व आधारित विकास, उद्यमिता, कृषि और स्टार्टअप पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। श्री शर्मा ने राजस्थान के विकास के विजन, उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं को पेश किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, रेल तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने इस समय इन संस्थानों में परिवर्तन पर भी जोर दिया। श्री वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल मंत्र के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने की बात की।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार

0: जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने रेल विकास के लिए पुरजोर प्रयास किए हैं।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: इसके बाद श्री वैष्णव ने MNIT में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI लैब विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने प्रदेश भाजपा मुख्यालय से प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। PBM अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले की गहन जानकारी लेने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बीकानेर पहुंचे। श्री खींवसर ने चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही प्रभावित प्रसूताओं के परिजनों से बात कर बेहतर इलाज करवाने का आश्वासन दिया। चिकित्सा मंत्री ने मीडिया से कहा कि मामले की विस्तृत जांच करवाई जा रही है, रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अस्पताल परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में जैविक उर्वरक निर्माण और भंडारण संयंत्र में हो रही गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा किया। श्री मीणा अपनी टीम के साथ कानोता स्थित एक फैक्ट्री का जायजा लेने पहुंचे, जहां निर्धारित मानकों के विपरीत बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे थे। कृषि मंत्री ने इन उर्वरकों की पैकेजिंग और लेबल पर अंकित जानकारियों को भ्रामक बताया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कच्चे माल का उचित भंडारण और नहीं किया जा रहा था। मीडिया से बातचीत में श्री मीणा ने बताया कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। बुरी तरह से बेरहमी से किसानों का लूटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। खरीद के उसकी उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी भूमि खराब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए तीनों प्रत्याशियों को विधानसभा में आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ. सतीश पूनिया, डॉ. अलका सिंह और कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी को चुने जाने की घोषणा की। उन्होंने तीनों प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिए। राज्य में कल से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100

0: प्रतिशत छूट दी जाएगी।
1: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देश किया है कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से नागरिकों को 22 प्रमुख विभागों की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इनमें खातों के विभाजन, नामांतरण और रास्ते संबंधी प्रकरण तथा अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून के दौरान संभावित बाढ़, जलभराव, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक और समन्वित तैयारियों पर जोर दिया गया है। आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी, समयबद्ध चेतावनी और प्रभावी समन्वय पर बल दिया। डॉ. मीणा ने 15 से राज्य और जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्षों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मॉनसून की नियमित निगरानी के लिए वेदर वॉच ग्रुप का भी गठन किया गया है। साथ ही डॉ. मीणा ने सभी बांधों, जलाशयों और एनीकटों की मरम्मत तथा रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के दौर के बीच आज से कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव की उम्मीद है। राज्य में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। 12 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। वहीं कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने के भी आसार हैं। बदले मौसमी तंत्र का असर 14 जून तक बना रह सकता है। अंधड़ और बरसात की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा गया। तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत में मिट्टी ढहने से 3 महिला श्रमिकों की मृत्यु हो गई। घटना वैशाली नगर इलाके में हुई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियां केवल घरेलू कामकाज तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अहम योगदान देती हैं। अदालत ने कहा है कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित करना समाज में उनके योगदान को कम आंकना है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि घर की देखभाल और प्रबंधन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल के मंत्र के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलेवर में बदलाव का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, 2 सीटें भाजपा और 1 कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। और राज्य में कल से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। जिले में 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत विभिन्न गतिविधियां और व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक, ग्राम पंचायत, निजी और राजकीय शिक्षण संस्थानों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, कारागृहों, पुलिस थानों, पर्यटन स्थलों, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर योग आयोजन किए जाने, योग संयम पोर्टल पर पंजीकरण कराने तथा योग के उपरांत फोटो अपलोड करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन को भी अब जंक्शन का दर्जा मिल गया है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित गंगापुर सिटी से दौसा मार्ग पर रेल यातायात

0: सुचारू होने के बाद कोटा रेल मंडल प्रबंधन की ओर से ये घोषणा की गई। जिले में इन दिनों जनगणना का कार्य प्रगति पर है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से 33 प्रश्नों को पूछकर एचएलओ ऐप पर दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज की। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला। अभियान का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रभात फेरी, कलश यात्राएं, पीपल पूजन, जल पूजन, पौधरोपण, संकल्प, शपथ, श्रमदान और मैत्री फुटबॉल मैच जैसी अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं। विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली के साथ अभियान का समापन हुआ और इसी के साथ हरियालो राजस्थान अभियान का आगाज हुआ। अभियान के तहत इस मॉनसून सीजन में सघन वृक्षारोपण किया जाना है। इसके लिए लोगों को नर्सरियों से पौधे वितरित किए जा रहे हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बीते दिनों खुशखबरी मिली है। बाघिन T124 रिद्धि दो शावकों के साथ नजर आई है। नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों में और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर देखी गई। वहीं जिले के पालीघाट स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में दुर्लभतम घड़ियाल प्रजाति के नन्हे बच्चे अंडों से बाहर निकल रहे हैं। पालीघाट क्षेत्र में अब तक करीब 100 घड़ियाल हैचलिंग्स का सुरक्षित जन्म हुआ है। चंबल क्षेत्र में वन विभाग के प्रयासों की ये एक बहुत बड़ी सफलता है। जिले में इन दिनों मौसम का मिला जुला असर है। कभी तेज गर्मी तो कभी पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की और मध्यम बरसात का दौर चला। इसके साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि इससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर से गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। आगामी मॉनसून के मद्देनजर डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल के सदस्यों ने जिले के विभिन्न बांधों का निरीक्षण कर यहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से यातायात और सड़क सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन, फर्जी नंबर प्लेट, लाल नीली बत्ती, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, सायरन हूटर, नंबर प्लेटों के अनधिकृत शब्द चिन्ह और स्टिकर लगाकर पंजीयन चिन्ह की दृश्यता को प्रभावित करने, नियम विरुद्ध नंबर प्लेटों वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम कृषि महोत्सव 2026 के तहत करमोदा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में उर्वरकों के संतुलित उपयोग विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विभाग की ओर से आत्मा योजना के तहत फूल उत्कृष्टता केंद्र में पर्यावरण, जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती विषय पर कृषि संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देकर पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता का आह्वान किया गया। जिले में इन दिनों राजस्व विभाग की ओर से रास्ता खोलो अभियान के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में विभागीय अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में गैर मुमकिन रास्तों पर बरसों से किए गए अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले भर में अनेक स्थान पर सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटवाकर रास्ते खुलवाए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो दुनिया में उथल पुथल रा मौजूदा दौर में आई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो। जैसलमेर रा रामगढ़ माए 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर रो जयपुर रो उद्घाटन कीनो। प्रदेशों राज्यसभा चुनाव माए 3 ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनीचिया। 2 सीटा भाजपा और 1 कांग्रेस रा खाता माए। और राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि दुनिया में अनिश्चितता रा मौजूदा

0: दौर में आई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। वे आज नई दिल्ली में राखी जी नीति आयोग री गवर्निंग काउंसिल री मीटिंग में बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि विकसित भारत बनावन ओड़ी बढ़ रहा देश में केंद्र और राज्य सरकार की भेली जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वे कहो कि राज्य बीच एक दूजा री मदद बातचीत और विचारों लेन देन भी होनो चाहिए। मीटिंग में चोखी भनाई लिखाई कौशल विकास और नौजवानों ने नौकरी धंधारा मौका मुहैया करावन माथे सरकार रो खास ध्यान भेवन री बात कही जी। ईसा गई महिलाओं री अगुवाई माई विकास उद्यमिता खेतीबाड़ी और स्टार्टअप रे बारा माई चर्चा करी जी। मीटिंग माई मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान रा विकास री सोच उपलब्धियां और कार्य योजना मारी जानकारी दीनी। सूचना और प्रसारण रेल और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर में आकाशवाणी रा परिसरों जैसलमेर जिला रा रामगढ़ में 20 किलोवाट बूता वाला एफएम रेडियो ट्रांसमीटर रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन कीनो। इस मौके श्री वैष्णव सामरिक अवसंरचना माथे ध्यान देता थका आकाशवाणी और दूरदर्शन सरहदी हलका में संचार व्यवस्था मजबूत करण सारू कहो। वे डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माय बदलाव बाबत कहो।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: केंद्रीय मंत्री प्रदेश माय न्यारा न्यारा रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रा कामा रोई जिक्र कीनो। वे कहो के एनडीए सरकार रेला रा विकास सारू हर संभव कोशिश कर रही है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: कार्यक्रम में राज्य रा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर री सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती रा अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी रा महानिदेशक राजीव कुमार जैन समेत कई आला अहलकार मौजूद रहा। ये पाछे श्री वैष्णव मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो दौरो कर वठे सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई लैब विकसित करण रो ऐलान कीनो। वह विद्यार्थियों सागे बातचीत कर नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप ने बढ़ावो देवन माथे जोर तीनो। केंद्रीय मंत्री जयपुर रा कृषि अनुसंधान केंद्र माए राखी जिया विकसित भारत संकल्प सम्मेलन माए शामिल भया। वह प्रदेश भाजपा मुख्यालय माए खबर नवी सा गई बातचीत कीनी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले काल जयपुर पधारेला। वे नशा मुक्त भारत अभियान रा तेत रख्या जावन वाला कार्यक्रम माए खास पावना रा तौर शिरकत करेला। मारो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन सशक्तिकरण सम्मान समारोह माए शामिल भेवन रो कार्यक्रम है। बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल माए जापा वाली लुगाइयां री तबियत खराब हेवन रा मामला री जानकारी लेवन सारू चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बीकानेर माए डॉक्टरा और अहलकारा सागे मीटिंग कीनी और हालात रो जायजो लीनो। वह अस्पताल माए भर्ती महिलावां री साता पूछी। मंत्री जापा वाली लुगाइयां रा परिवार वाला सागे बातचीत कर वाने बेहतर इलाज रो भरोसो दिरायो। चिकित्सा मंत्री खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो कि मामला री विगतवार जांच कराई जा रही है और जांच रपट मिलिया पाछे जरूरी कार्रवाई करी जावेला। ई मामला न लेर कांग्रेस रा कार्यकर्ता आज पीबीएम अस्पताल परिसर माए सरकार रे खिलाफ प्रदर्शन कीनो।

अर नारा लगाया। वह वाकयारी आला दर्जारी जांच करावन अर दोषियां रे खिलाफ करड़ी कार्रवाई री मांग कीनी। इन दौरान पुलिस ने हल्को लाठीचार्ज करनू पड़ियो। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर माए जैविक खाद बनावन रा कारखाना माए कथित गड़बड़ियां रो खुलासो कीनो। वह कानोतारा एक कारखाना माए तय मानका रे इतर जैविक खाद बनावन री ठाकीनी। कृषि मंत्री इन खाद रा कट्टा अर लेबल माथे मंडोड़ी जानकारियां ने भरमावन वाली बताई। खबर नवी संसार

0: चलायो जा रो है और दोषी मिलन वाला रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावेला।
1: ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। बुरी तरह से बेरहमी से किसानों का लूटने का खुद से प्रयास किया जा रहा है। खरीद के उसकी उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी भूमि खराब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश और राज्यसभा रे तीन सीटा रा द्विवार्षिक चुनाव सारू तीन ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनी चिया है। राज्यसभा चुनाव रा रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा, भारतीय जनता पार्टी रा डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर अलका सिंह और कांग्रेस रा नीरज डांगी रा चुनिया जावन रो ऐलान कीनो और वाना चुनिया जावन रा सर्टिफिकेट तीना। राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। शहरी शिविरां में साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत और फ्री होल्ड पट्टा जारी करण समेत जनता रा भलारी न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो लेवण सारू पात्र लोगों अर्जियां ली जावेला। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा बतायो कि लाड़ला बरसां री लीज री बाकियात री रकम एक मुश्त जमा करावन पर ब्याज माए पूरी छूट दी जावेला।
2: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देशित किया कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर में अहलकारा सागर मीटिंग कर जरूरी हुक्म दीना। वह राज्य में चौमासा री रुत में बाढ़, पानी भरण, घनी बिरखा वेवण और दूजी कुदरती आपदावां रो सामो करण सारू मिलर तैयारियां करण माथे जोर दीनो। डॉक्टर मीणा 15 जून राज्य और जिला स्तर माथे आपदा नियंत्रण कक्ष चालू करण रा हुक्म दीना। आपदा प्रबंधन मंत्री कहो कि चौमासा माए हालात माथे लगातार निगरानी राखण सारू वेदर वॉच ग्रुप बनाई चियो है। वह सगला बंधा और एनिकटा ने मरम्मत और रख रखाव तय करण रा हुक्म ही दीना। अरब मौसम प्रदेश में पड़ रही जोरदार गर्मी और उमस बीच आज कठे कठे मौसम में बदलाव रा आसार है। 12 जिला में आंधी बारिश सारू चेताई चियो है, जबकि कठे कठे ओला पड़वारी संभावना है। 14 जून ताई अंधड़ और बरसात री संभावना ने ध्यान रखता थका जनता ने सावचेत रहवन री राय दी रीची है। ई बीच आज कई ठोणा पारो 40-46 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करी चियो। केंद्र सरकार सुरक्षा प्रणालियां और माली बुनियादी ढांचा माथे साइबर अपराधा रा बढ़ता खतरा सारू चेतायो है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र री ओर जारी चेतावनी रे मुजब साइबर धोखाधड़ी सारू डीप फेक वीडियो काम लिया जा रहा है, जहां नजरिए साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जॉब पोर्टल, डेंटिंग प्लेटफॉर्म और फोन नजरिए ठगी करे है। केंद्र सरकार एथेनॉल भेल और बनाई जा पेट्रोल माथा एक्साइज ड्यूटी माफ करती नहीं है। वित्त मंत्रालय कानून जारी अधिसूचना रे मुजब 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल भेड़ो करी जा पेट्रोल माथा एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117-800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो दुनिया माए उथल पुथल रा मौजूदा दौर माए भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत

0: कहो। जैसलमेर रा रामगढ़ माए 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर रो जयपुर उद्घाटन कीनो। प्रदेश हूँ राज्यसभा चुनाव माए 3 ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनी चिया। 2 सीटा भाजपा और एक कांग्रेस रा खाता माए। और राज्य माए काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। हमारे ग्रामीण श्रोता भाई बहन अब सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम रेखा भाई सर, राम राम।
1: राम राम नंदू भाई, राम राम।
0: खेती और घर होने वाला हंगले किसान भाई बहना ने भी अपनो
1: राम राम सा।
0: देखो रेखा भाई सा, कार्यक्रम में आप ही रोज आवा सा और आपने किसान भाई बहना वाते भांत भांत री जानकारी लेने आवा सा, चाहे देखो स्वास्थ्य संबंधित वो अंडे अलावा देखो समय समय पर आप ही कार्यक्रम में विशेष विशेषज्ञ ने भी आपने बुलावा सा और आधुनिक कृषि में कई नवाचार भी रहा वनडे बारे में भी जानकारी दें सा और टेम टेम पे देखो आप ही स्वास्थ्य बारे में जानकारी दे दें सा, लेकिन फसल उत्पादन के बारे में और अंडे अलावा किसानी के बारे में नया नया कई क्षेत्र में उपयोग भी रहा है वनडे बारे में भी जानकारी दें सा और आपने किसान भाई बहना ने राजस्थानी लोक संगीत भी हुनावा सा।
1: बिल्कुल सा, तो देखो कार्यक्रम की शुरुआत करा और सब पहली बात करा चौपाल री, जनी रे महीने अपने किसान भाई ने जानकारी देवा की जो फल उत्पादन वे वनी री उन्नत तकनीका कई कई है सा।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो। देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है जटे देखो फलारी खेती रो भी विशेष महत्व है। आप ही जाना कि फला में विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और दूसरा पोषक पदार्थ जो है प्रचुर मात्रा में पाया जावे, जो कि अपने स्वास्थ्य रे वास्ते बहुत ही ज्यादा जरूरी वे वैसा।
1: बिल्कुल सा, देखो बढ़ती जनसंख्या है, पोषण री आवश्यकता और जो किसान भाई री आय बढ़ावर वास्ते उद्देश्य अगर आप देखा तो फलारे उत्पादन में तकनीक जो वे वणी में उन्नत रो उपयोग करीन आप जो वणी तकनीक ने जो वणी फसल उत्पादन ने वणी आप बढ़ाई सका
0: हां,
1: तो आधुनिक कृषि तकनीक रे माध्यम कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करियो जावे है और जो फल है वणी गुणवत्ता में भी सुधार करियो जावे है सा।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो फल उत्पादन न केवल किसानारी आय में बढ़ोतरी करे सा बल्कि यो देश री अर्थव्यवस्था ने भी मजबूत करे सा। फल री खेती में रोजगार रा अवसर भी उत्पन्न हुए और अंडे अलावा देखो प्रसंस्करण उद्योगों रो जो कच्चो माल है वो भी अपने अणियों से उपलब्ध हुए। भारत में बात करा तो देखो आम है, केला है, अमरूद है, संतरा, अंगूर, अनार आदि फलारे उत्पादन में देखो विश्व में अग्रणी स्थान पर भारत है सा।
1: देखो सा आप बात करा हाँ कि फलारे उत्पादन की तकनीक री, तो सब पहली बात करा उन्नत किस्म रो चयन, तो फल उत्पादन में अच्छी गुणवत्ता वाली जो अधिक उपज दे वाली किस्म रो चयन सब महत्वपूर्ण वे। उन्नत किस्म में रोग है और कीट प्रतिरोधी वे, तो जलवायु परिवर्तन ने सहन करने की क्षमता राखे है, तो आने वास्ते उन्नत किस्म रो चयन करना बहुत ही जरूरी है।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो जटे उदाहरण री बात करा तो आम री उन्नत किस्म री बात करा तो आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, अमरूद री बात करा तो देखो इलाहाबाद सफेदा, लालित, अनार री बात करा तो जैसे भगवा है, ई जो है अंडी उन्नत किस्मा व्यवसा और उन्नत किस्मा रे उपयोग देखो उत्पादन में 20-40% री देखो आपने वृद्धि भी वेवे तो अणियों किसानों ने फायदो भी रेवे सा।
1: बिल्कुल सा, और अबे बात करा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री रो उपयोग करनो, फल उत्पादन में स्वस्थ और प्रमाणित पौधा रो उपयोग आवश्यक वे है। पौधा में हमेशा मान्यता प्राप्त नर्सरी खरीदनो चाहे है, रोग मुक्त पौधा जो वे देखो बगीचा री आयु बढ़ावे है और उत्पादन अधिक भी देखो मिले है आपने, और अणी वास्ते देखो लारे लारे अपने उचित भूमि है, जलवायु चयन भी अपने अच्छी तरीके से करना चाहे। जनी रे महीने देखो प्रत्येक फल री अपनी विशिष्ट जलवायु है, मिट्टी री आवश्यकता है, तो अणी वास्ते अपने उचित भूमि और जलवायु हमेशा ध्यान रखना चाहे।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जैसे आम जो है वनडे वास्ते दोमट मिट्टी वे तो बढ़िया रहे, अंगूर रे वास्ते अच्छी जल निकास वाली भूमि जो वे तो वह बढ़िया रहे, तो अणी चीजा रो भी अपने ध्यान रखना सा। अगली जो उन्नत तकनीक है अग्नि फसल उत्पादन में तो वह है उच्च गणत रोपण री, यह आधुनिक तकनीक फलारी खेती ने तेजी लोकप्रिय वेरी है सा। अणी में कही है कि पौधा ने कम दूरी पर लगाया जावे, जणियों कही है कि प्रति इकाई जो क्षेत्र है वणी में ज्यादा ज्यादा पौधा लागे, अणियों लाभ यो वे कि देखो उत्पादन ज्यादा वे।

0: जो है कम भूमि रो भी बेहतर उपयोग भी जावे, रख रखाव में भी आपने सुविधा रहे, अंडे अलावा देखो फल जो उत्पादन है वो भी टाइम पे वही जावे सा।
1: बिल्कुल सा। और लारे लारे देखो ड्रिप सिंचाई प्रणाली ने भी अपने जो है देखो अपनानी चाहिए। अणिरे महीने देखो जल संरक्षण के वास्ते ड्रिप सिंचाई एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है। अणिमें पानी जो है सीधा पौधा की जड़ा तक पहुँचाया जावे। अणिरे लाभ की बात करा तो जो है 40 से 60% तक जो है जल री बचत वे है। खरपतवार नियंत्रण भी वे है और उर्वरक रो जो बेहतर उपयोग वे वो भी अणिरे महीने वे है। लारे लारे उत्पादन में भी वृद्धि वे है।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अंडे अलावा देखो फलारे उत्पादन रे बात है, आजकल फर्टिगेशन तकनीक रो भी उपयोग हुए अणि में कही है कि सिंचाई रे माध्यम में उर्वरक ने भी देखो पानी रे लारे लारे पौधा तक पहुंचायो जावे सा। अणि लाभ यो वे कि देखो उर्वरक की बचत भी वे, पौधा ने संतुलित पोषण भी मिली जावे और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी वे, और अंडे अलावा देखो अपने श्रम लागत में भी कमी वे, यानी कि अपने लोगों ने भी कम वणी में राखना पड़े सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो मल्ची जो तकनीक वे वणी रे महीने देखो पौधा रे आसपास री जो भूमि वे वणे प्लास्टिक शीट है या जैविक पदार्थ है वणु ढाक दियो जावे। अणि में लाभ यो वे कि अणि में नमी संरक्षण वे है, खरपतवार नियंत्रण वे है, मिट्टी जो तापमान है वो भी नियंत्रण वे है और लारे लारे उत्पादन और गुणवत्ता में भी वृद्धि वे है।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अंडे अलावा देखो फलारा जो पौधा है वणारी अगर आप नियमित छंगाई करा तो अणियों कहिए कि पौधा रो आकार नियंत्रित रहे और प्रकाश और वायु रो भी उचित संचरण वे। अणियों लाभ यो वे कि देखो ज्यादा से ज्यादा वणा में फल आवे, रोगारी जो है वणी में कमी वे, और अंडे अलावा बेहतर गुणवत्ता वाला वणी पौधा पे फल भी लागे और अणि उत्पादन बढ़े। जैसे आप ये अंगूरी अमरूदरी और अनार में बात करा तो यह तकनीक अणा तीना में ज्यादा बेहतर रूपों काम करे सा।
1: बिल्कुल सा। और अबे देखो बात करा कि एकीकृत पोषण प्रबंधन करीने भी आपा जो पौधा है वणा ने संतुलित पोषण प्रदान कर सका। हाँ जणी रेवा से देखो रासायनिक उर्वरक है वणी में जैविक खाद और जैविक उर्वरक रो उपयोग कर सका। हाँ अणीरा मुख्य स्त्रोत की बात करा तो गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम री खली है, जैव उर्वरक है। अणियों कही कि मिट्टी जो है वणी री उर्वरता वणी थकी रहेगा और उत्पादन भी अच्छो वेगा।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो अना सब तकनीका रो उपयोग करी अंडे अलावा संरक्षित खेती है, उत्तक संवर्धन है, अंडे अलावा जैविक फल उत्पादन तकनीक जो है अना सब रो उपयोग करी किसान भाई बहन जो है फलारो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके सा, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे तो देखो बनारे आय में भी बढ़ोतरी वे सा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो या तो आपा जानकारी दी है कि फलों उत्पादन रे वास्ते उन्नत तकनीका कई है। और अभी देखो कार्यक्रम में आया हाँ तो आपने किसान भाई मनोरंजन भी कराना है सा।
0: बिल्कुल सा
1: तो हुणा सा राजस्थानी गीत।

0: इसको सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो रेखा वैसे यू हुए आप राजस्थानी लोकगीत और लारे लारे संदेश भी हुए सा। और देखो कार्यक्रम में आप ही आगे बढ़ा तो मौसम री जानकारी जो है अपने किसान भाई बहना वाते घनी महत्वपूर्ण वे क्योंकि देखो मौसम री जानकारी रे अभाव में किसान भाई बहना रे कती दान नुकसान भी वे जावे। और अगर किसान भाई बहना ने मौसम री जानकारी रो पहली पतो पड़ जा तो वनडे हिसाब भी अपने कार्य रो प्रबंधन कर सके। तो अभी आपने किसान भाई बहना ने मौसम री जानकारी दा सा।
3: हाँ सा देखो सा आवाला दिना में मौसम जो है गर्म और शुष्क रेवारे संभावना बनी थकी है। दिन रो अगर अधिकतम तापमान देखा है तो लगभग 38.40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.27 डिग्री सेल्सियस रे बीच में रेवेला। तेज धूप और गर्म हवा रो प्रभाव भी रहेगा। यदि भी प्री मानसून गतिविधियां कारण नरे स्थान पे बादल छावा और हल्की गर्जनारी संभावना भी वणी थकी रेवेला।
2: बिल्कुल आप ठीक रहे। और देश रा कुछ स्थान पे देखो दो सप्ताह में सामान्य कम वर्षा रेवारी संभावना भी जतई जा रही है सा। तो अंडे बात इस किसान ने सलाह दी जा रही है कि मानसून पूर्व इस अपने खेतरी तैयारी जारी रखनी है सा। और या तो देखो आप मौसम संबंधी जानकारी दीदी सा अबे आपने किसान भाई बहना ने आवा वाला टाइम में कशा कृषि संबंधी कार्य करना है वंडी जानकारी दा सा।
3: बिल्कुल सा देखो सब पहली बात करा खरीफ फसल री तैयारी। चने री महीने मक्का है सोयाबीन है उड़द मूंग बाजरा अना जो खरीफ री फसल रे वास्ते बीज और उर्वरक री व्यवस्था कर लेनी है। लारे लारे प्रमाणित और उन्नत किस्म रा बीज रो चयन कर लेनो और बीज उपचार जरूर जो है अपने करनो चाहे ताकि जो उत्पादन है वो होवेगा।
2: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो खेत री तैयारी री जटे बात वेरी है तो वर्षा जल संरक्षण वास्ते खेतारी मेड़बंदी करनी है। गहरी जुताई पूरी करीन खेत री बुआई रे वास्ते खेत ने तैयार करना है। अंडे अलावा देखो खेत में जल निकासी री उचित व्यवस्था भी अपने करनी है सा।
3: बिल्कुल सा और लारे लारे सिंचाई रो भी प्रबंधन कर लेनो चाहे। खड़ी फसल है वणी रे महीने और बागवानी पौधा में भी देखो आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लेनी है। सुबह और शाम रे समय सिंचाई करनो बहुत ही लाभकारी रहेगा।
2: बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो अब पशुपालन संबंधी जानकारी अपने किसान भाई बहन ने दा तो देखो अनी टाइम पे गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो अपने पशुओं ने जो है पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। अंडे अलावा दोपहर ही गर्मी वंचावरे वाते बनाने कहीं छायादार स्थान रे नीचे बांधना है और हरा चारा री भी बनाने पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ेगा सा।
3: हाँ सा और देखो लारे लारे बागवानी फसला है वनारो भी आपने ध्यान रखनो है। जनवरी महीने आम है नींबू अमरूद और अन्य फलदार पौधा में नमी बनाए तकी रखनी है। कीट और रोग री नियंत्रण जो है देखो नियमित रूप अपने निगरानी करतो रहनो चाहे है।
2: बिल्कुल आप ठीक रहे हो। किसान ने देखो विशेष सलाह दी जा रही है कि देखो मानसून आगमन पहली खेता में जल संरक्षण और खरीफ फसला री तैयारी पर विशेष ध्यान देनो है ताकि देखो पहली अच्छी वर्षा का वेते ही अपना किसान भाई बहन टाइम पे जो है बुआई कर सके सा।
3: बिल्कुल सा तो नंदू भैया तो ही देखो मौसम संबंधी जानकारी और अबे आपके वो तो आपने किसान भाई मनोरंजन भी करदा सा।
2: बिल्कुल हुनामा एक राजस्थानी लोकगीत।

0: तो देखो सर, घणो ही मनभावन राजस्थानी गीत होणियो सा।
1: बिल्कुल सर।
0: और अबे देखो कार्यक्रम में बात करा हाँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कई है और अणीरो जो फायदो है किसान भाई कड़ी तरीको उठाई सके ऐसा।
1: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो। देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है भारत सरकार द्वारा किसानों ने प्राकृतिक आपदा के कारण जो भी फसल रो नुकसान हुए तो वणियों वित्तीय सुरक्षा प्रदान करवा बाते या शुरू की दी गई है सा। अन्य 2016 में शुरू की दो गयो हो और अंडो उद्देश्य जो बात करा तो किसानों की आय ने स्थिर राखनो और कृषि क्षेत्र में जो है उत्पादन जो है वन्ने स्थायी बढ़ावो देनो है सा।
0: बिल्कुल सा। देखो योजना रे प्रमुख उद्देश्य की बात कर रहा तो अणीरे महीने जो है वित्तीय सहायता मिले है। जणी में देखो प्राकृतिक आपदा है, कीट या बीमारी रे प्रकोप जो फसल खराब व्यवहार पे किसान भाई ने आर्थिक मदद मिले है। लारे लारे किसान भाई ने नवीन और आधुनिक कृषि पद्धति अपनावर वास्ते भी प्रोत्साहन मिले है और खेती रे महीने ऋण है, लोन री उपलब्धता है सुनिश्चित करना है ताकि किसान भाई अपनी खेती बाड़ी जो है वणी ने जारी रख सके है।
1: बिल्कुल आप ठीक रहे हो। अणी में देखो कशा कशा चरण है तो वनडे बारे में बात करा तो देखो बुआयू पहली रे जोखिम री बात करा तो यदि प्रतिकूल मौसम है जैसे कि सूखो है वनडे कारण बुआई है या रोपाई नहीं भी सके तो बीमित राशि रो 25% तक रो दावो जो है किसान कर सके। खड़ी फसल में नुकसान की बात करा तो देखो जटे सूखो पड़ जावे, कतिदान बाढ़ आई जावे, ओलावृष्टि, चक्रवात, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरवा जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो भी नुकसान वे वंडो भी योजना रे अंतर्गत कवरेज वेवेसा।
0: बिल्कुल सा। लाल लाल स्थानीयकृत आपदा है वणीरी बात करें तो ऐसा नुकसान जो पूरा राज्य में नहीं बल्कि कहीं व्यक्तिगत खेत है या छोटा क्षेत्र में ओलावृष्टि है या पास भूस्खलन है वणीरे कारण वे है। वणीरे महीने भी देखो अणी में नरोई फायदो मिले है अपने और कटाई के बाद में जो वे नुकसान है वणी में भी खेत में जैसे कि सूखा रहे वास्ते छोड़ी गई जो फसल है अगर चक्रवात आई जाए या बेमौसम बारिश है तो 14 दिनारे महीने भीतर जो अपने नुकसान वेरो है वणी में भी बीमो कवरेज मिले है।
1: बिल्कुल आप ठीक ही रहो। अब प्रीमियम और सब्सिडी री बात करा तो देखो किसाना पर वित्तीय बोझ ने कम करवा वास्ते सरकार जो है प्रीमियम री दरा जो है योजना रे अंतर्गत वा भी बहुत कम राखी है सा। खरीफ री फसला री बात करा तो देखो कुल बीमित राशि रो केवल 2% जो है प्रीमियम रे रूप में किसान वसूल हो जावे सा। रबी री फसल री बात करा तो कुल बीमित राशि रो केवल 1.5% जो है प्रीमियम वो सरकार द्वारा अणी योजना रे अंतर्गत लियो जावे। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों की बात करा तो कुल बीमित राशि रो 5% प्रीमियम रे रूप में वसूलियो जावे सा।
0: बिल्कुल सा। अबे योजना रे लिए देखो आपे पात्र कौन व्यक्ति है वणी री बात करा तो अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसला उगावा वाला जितना भी किसान भाई है जणी री महीने बटाईदार है और काश्तकार है वी शामिल है। किसान भाई रे पास में अगर फसल रे वास्ते बीमा योग्य जो हित है वो वेणो चावे। जना किसान भाई ने कृषि ऋण लियो है तो वणारो बीमो है जो अधिकांश मामला स्वैच्छिक अनिवार्य रूप बैंक द्वारा लियो गयो है। घेर ऋण किसान भाई अणी में स्वेच्छों जो नामांकित कर सके है।
1: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो। अणी योजना रे अंतर्गत पंजीकरण कतर करवाणो है वनडे बारे में आपने किसान भाई बहना ने जानकारी दा तो देखो योजना रो लाभ लेवा वास्ते किसान ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल जो है जिन्हें आप NCIP कहवा सा वणी पे पंजीकृत वेणो अनिवार्य है सा। ऋण लेवारे वाले किसानों रो डेटा जो है बैंक स्वयं अपलोड कर देवे जबकि ऋण नहीं लेवा वाला किसान सामान्य सेवा केंद्र जन्ने आप CSC केंद्र का या स्वयं पोर्टल रे माध्यम किसान भाई बहन आवेदन कर सके। आवेदन रे टाइम में देखो कशा कशा दस्तावेज चावे वनडे बारे में अपने किसान भाई बहना ने जानकारी दासा।
0: बिल्कुल सा। किसान रो पहचान पत्र जणी रे मैंने आधार कार्ड है, वोटर ID है, भूमि रो स्वामित्व दस्तावेज जणी रे मैंने खसरा खतौनी री कॉपी है, बैंक खाता रो विवरण पासबुक री फोटोकॉपी, बोई गई फसल रो प्रमाण पत्र या पछी विवरण ये चीजा देखो अपने चावे है।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अबे आपने किसान भाई बहना ने जानकारी दा कि देखो दावा रो वणारो आकलन कतर वेवे और वणारे आधार पर कार्रवाई कतर वेवे तो देखो पारदर्शी और नुकसान और त्वरित आकलन रे बाते PMFBY राष्ट्रीय फसल बीमा योजना जो है अंडो उपयोग करीन कई डिजिटल पहला रे एकीकृत की दो गयो है। फसल रे नुकसान रे आकलन में तेजी करवा वाते सटीक जानकारी प्राप्त करवा वाते स्मार्टफोन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यानी कि उपग्रह डेटा और ड्रोन प्रणाली रा उन्नत तकनीकारी उपयोग या मदद ली जावे सा। अंडे अलावा आवारे वाते भुगतान रे वाते किसानों ने सीधो बैंक रे खाता में वणारे पैसा जमा करायो जावे सा।
0: बिल्कुल साबे बात करा किसान भाई वास्ते लाभ और महत्वरी भारतीय कृषि मुख्य रूप मानसून और मौसम पे निर्भर।

0: हे, जलवायु परिवर्तन रे आणि दौर में असामायिक वर्षा है, सूखो है, ओलावृष्टि है, अक्सर किसान भाई जो पूरी मेहनत है वहीं पे पानी फेर देवे। ऐसी स्थिति में अपने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ढाल री तरह काम करे, प्रीमियम री कम दरा और सरकारी सब्सिडी आणि देश रे छोटा और सीमांत किसान भाई वास्ते अत्यंत ही किफायती और व्यवहारिक वणावे है।
1: बिल्कुल आप रेखा भाई सर ठीक ही रहा हो कि देखो यह योजना न केवल किसाना ने कर्ज जो दुष्चर्क वे बणियो बाण निकाले बल्कि आवा वाला सीजन में पाछो अच्छी तरह खेती शुरू करवा वाते जितनी भी पूंजी चावे वह बने उपलब्ध करावे, कृषि क्षेत्र की निरंतरता ने सुनिश्चित भी करे और वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम रे आदर्श वाक्य ने योजना जो है पूरा भी करे सा।
0: बिल्कुल सा, तो नंदू भाई देखो या तो आप योजना की बात की थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कई ऐसा और अब एक कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा सा और होना सा रास्ता नहीं गीत
1: होना सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो रेखा भाई सा यो हुणियो आपी राजस्थानी लोकगीत और लारे लारे संदेश भी हुणियो सा। और कार्यक्रम में देखो आपी आगे बढ़ा तो देखो आपी बात करा डिजिटल बैंकिंग जागरूकता री। देखो आपी जाना का आजकल देखो हर काम जो है ऑनलाइन वे गयो है सा। और वणी में देखा कि आपी देखो ऑनलाइन जरिए आपी बैंकिंग काम भी निपटाई सका सा। आपी देखा कि देखो कन्ने भी पेमेंट करनो है या कन्यू भी पेमेंट लेनो है अथवा यूं देखना है कि अपने बैंक में कतरा पया है खाता में कतरा पया है यो सब भी काम अपने मोबाइलों आपी करा सा। तो अणी में भी देखो आपने कुछ सावधानियां रखवारी जरूरत है क्योंकि देखो आप ही जाना कि डिजिटल बैंकिंग जागरूकता रो उद्देश्य जो है ऑनलाइन लेन देन ने सुरक्षित करनो है आसान बनानो है और धोखाधड़ियों मुक्त बनानो है। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI भी कहवे कि देखो वनारो एक अभियान भी चल रो है कि देखो ग्राहका ने सुरक्षित बैंकिंग रे प्रति वनारो सचेत करनो वनारी एक जिम्मेदारी है सा।
3: बिल्कुल सा, डिजिटल बैंकिंग आप देखे हाँ कि बेहद ही सुविधाजनक तो है लेकिन अणी रे मैंने साइबर खतरा रो भी जोखिम बढ़ गयो है।
2: बिल्कुल सा,
3: आप क्यों जैसे कि जागरूकता रो अर्थ है कि अपनी मेहनत तो कमाया गया जी पैसा है उन्होंने सुरक्षा वास्ते सक्रिय राखनो। तो देखो अपनी जो जानकारी वणी ने सुरक्षित राखनो बहुत ही जरूरी है। तो अणी वास्ते देखो अपने जो पासवर्ड है पिन कोड है OTP है जिन्हें आप वन टाइम पासवर्ड है UPI कोड है अपना खाता की कुंजी है। तो बैंक अधिकारी या प्रतिनिधि आपको कभी भी आपरो OTP या पासवर्ड नहीं पूछेगा। अणी में कभी भी कणी रे लारे साचा नहीं करना चाहे अटा तक की दोस्तों है परिवार कशा भी सदस्य वंडे लारे भी साझा नहीं करनो है और अणे ऐसी जगह नहीं लिखनो है जटे दूसरा अणे देख सके।
2: बिल्कुल आप ठीक है। देखो आजकल

0: एक नयो तरीको शुरू भी हो है जिन्हें आप फिशिंग कहाँ सा अणि में कही है कि देखो जालसार अक्सर अपनी संवेदनशील जानकारी चुरावा रे वाते कही है कि धोखा भरिया हथकंडा अपनावे वे अपना बैंक या कहीं विश्वसनीय संस्थाओं भेजा थका प्रतीक व्यवहार वाला अच्छा ईमेल एसएमएस अपने मेले और बंडो लिंक मेल देवे ये संदेश आखिर अपने घबराहट पैदा कर देवे कि जैसे आपनों बैंक खाता ब्लॉक भी जाएगा या नकली इनाम रो लालच देवे अणि लिंक पे जैसे ही आप ही क्लिक करा और अणि वो आपने दुर्भावनापूर्ण जो भी सॉफ्टवेयर है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड हुई जावे और आप ही ऐसी किसी नकली वेबसाइट पे परा जावा और पचे अपना जो भी अपनी जानकारी गोपनीय है वह अंडे माध्यमों अपने वनी घोटालेबाज व्यक्ति तक पहुंच जावे। तो अपने ध्यान रखना है कि देखो अपना जो जानकारी है अपने कहीं फर्जी लिंक पे अपने शेयर नहीं करनी है साहब।
1: बिल्कुल साया, तो घनी बढ़िया बात बताई। और देखो सार्वजनिक वाईफाई रा जोखिम है अणि में घना हारा बढ़िया थका है, जो कि सार्वजनिक या असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट रहता थका अपनी बैंकिंग एप्स रो उपयोग करवाऊँ या वित्तीय लेनदेन वंचनो चावे। सार्वजनिक नेटवर्क हैकर्स रे वास्ते असुरक्षित वे है, जो आपकी जो आपका डेटा है वना इंटरसेप्ट कर सके है। जितना भी बैंकिंग गतिविधि वास्ते अपने मोबाइल डेटा है या कहीं भी विश्वसनीय सुरक्षित निजी नेटवर्क रो उपयोग करना चाहे।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अंडे अलावा दो कारक प्रमाणीकरण 2PA रो अपने इस्तेमाल करना, क्योंकि देखो अपना बैंकिंग और वॉलेट ऐप री सुरक्षा रे वास्ते 2FA ने सक्षम करना है। यो सुरक्षा रो एक अतिनिक परत है जणी में न केवल पासवर्ड बल्कि फिंगरप्रिंट स्कैन चेहरा री पहचान और अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजे जणियों कही है कि अपना खाता रा दो दान सत्यापन विधि अणि भेजा वैसा तो अपने अपने मोबाइल में अन्य ऑन करीन राखणो सा।
1: बिल्कुल सा, और लारे लारे नियमित रूप निगरानी भी रखना चाहवा आपा। अपने बैंक का स्टेटमेंट है लेन देन इतिहास ने नियमित रूप जांचवारी आदत डालनी चाहे। कहीं भी अनधिकृत या संदिग्ध लेन देन की सूचना तुरंत अपने बैंक ने देनी चाहे। अधिकांश बैंकिंग एप्स आपनो डेबिट है या क्रेडिट कार्ड खो जावारी या धोखाधड़ी की आशंका वेवा पे उन्हें तुरंत लॉक करवारी सुविधा देवे है, तो अपने एनी चीज रो ध्यान रखनो चाहे।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। फिर भी अगर धोखाधड़ी वे जावे तो आपने बैंक ने तुरंत सूचित करनो है। अंडे अलावा राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर आप कॉल कर सका सा। ऑनलाइन शिकायत भी आप पर आप जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर आप दर्ज कर सका। तो अपनों तो आपने किसान भाई बहनों ने यही कहना है सा कि बैंकिंग जागरूकता अपने बनाई रखनी है, क्योंकि देखो आजकल ऑनलाइन पेमेंट वगैरह में अपने निरंतर अपने सब सावचेत रहना है सा, और अंडे माध्यमों देखो आप ही दूसरा ने भी जागरूक करवा की कोशिश कर सका सा।
1: बिल्कुल सा, तो या तो देखो जानकारी ही डिजिटल बैंकिंग जागरूकता री। और अबे देखो कार्यक्रम में आपा होना सा राजस्थानी गीत
0: होना सा।

0: तो नंदू भाई देखो, मन भावन राजस्थानी गीत होने सा और अबे देखो प्रमुख दिवस री बात करा तो आज आपा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी री जयंती मनाई रहा सा।
1: बिल्कुल सा,
0: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो हा परिचय रा मोहताज नहीं है,

0: वणा लिखियो हो कि सरफरोशी तमन्ना जैसा अमर गीत ने हर भारतीय रे दिल में जगह वणई है। और अंग्रेज जो हाँ वणारी भारत री आजादी रे वास्ते चिंगारी छेड़ी ही जण्यू ज्वाला रो रूप लेने ब्रिटिश शासन ने हिले दीदो हो।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि देखो राम प्रसाद बिस्मिल रो जन्म जो है 11 जून 1897 ने शाहपुर उत्तर प्रदेश में व्यो होसा। अनारे पिताजी रो नाम मुरलीधरन और मातारी जी रो नाम मूलमती होसा।
0: देखो सा राम प्रसाद बिलमिल रे नेतृत्व में 10 लोग जो हा उन्हें सुनिश्चित कार्रवाई रे तहत यो काम करवारी योजना बनाई जो कि काकोरी कांड योजना बनाई ही वणी में 9 अगस्त 1925 ने लखनऊ रे काकोरी नामक स्थान पे देशभक्त ने रेल विभाग री जो विभाग की तरफ ले जा रहा संग्रहित धनराशि ने लूट ली थी।
1: बिल्कुल सर।
0: अणि काम में अशफाक उल्लखा चंद्रशेखर आजाद हा राजेंद्र लाहिड़ी सचिंद्र सान्याल आदि शामिल हा।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि देखो काकोरी कांड के तहत 10 लोगों की सुनियोजित टीम जो है 9 अगस्त 1925 ने जो है वणारी जो देशभक्ता जो है रेल विभाग री राशि ने धनराशि ने लूट ली दी ही सा। और काकोरी कांड रे मुकदमा में काफ़ी लोगों रो ध्यान पूरा जो है अणा देशभक्ता री ओर खींचो हो और देशभक्ति रो राजनीतिक वातावरण देश में वह गयो हो सा। और अपना जीवन रे अंतिम दिना में गोरखपुर री जेल में वणा अपनी आत्मकथा भी लिखी ही सा और फांसी रे तख्ता पे झूलवाऊ पहली भी 2-3 दिन तक भी अणिने लिखता रिया हा सा। और अणारी कुछ प्रमुख पुस्तकारी बात करा तो अणारी कुछ प्रमुख पुस्तकारी नाम है जैसे कि मन की लहर, वणा में अणा देशभक्तिपूर्ण और प्रेरणादायक कविता रो संग्रह है सा।
0: बिल्कुल सा। और एक ही स्वदेशी रंग देशभक्ति रो रंग यो वणा रे लेखन रो संकलन है जणी रे मैंने मातृभूमि रे प्रति वणा रो प्रेम और भारत री स्वतंत्रता री वणा री जो इच्छा ही व्यक्त की थी है। और है क्रांति गीतांजलि क्रांतिकारी गीत वणा री कविता रो एक संग्रह है जो वणा रे क्रांतिकारी उत्साह और स्वतंत्रता रे उद्देश्य रे प्रति समर्पण ने दर्शावे है।
1: बिल्कुल। अंडे अलावा चेतना री बातें नाम की किताब भी वणा लिखी जणी में भारतीयारा देशभक्ति री भावना जगावारे वाते एक केंद्रित जो है गद्य री रचना बना की दी। अंडे अलावा देखो आप बतायो इसे कि सरफरोशी की तमन्ना अंडो श्रेय बिस्मिल ने दियो जावे और यो प्रतिष्ठित जो है कविता जो है देशभक्ति री जो है स्वतंत्रता संग्राम रो एक पर्याय बन गयो हो सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो देशवासियों रे नाम संदेश भारतीय जनता रे वास्ते वणा संदेश और अपीला की दी ही जणी मई ने वणा स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल व्यवहारो आग्रह भी किदो है।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। बिस्मिल जो है काकोरी षड्यंत्र में संलिप्तता रे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया हा। बाद में वणा रे मृत्यु दंड दीदो गयो हो और 19 दिसंबर 1927 ने गोरखपुर जेल में वणा ने फांसी दी दी गई ही। लेकिन वणा री शहादत ने कई लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम जारी रखवा वास्ते प्रेरित भी किदो सा।
0: क्रांतिकारी कवि और स्वतंत्रता सेनानी बिस्मिल जो हा भारत रे स्वतंत्रता संग्राम पे अमिट छाप छोड़ी ही वणा अपने लेखन और कार्य रे माध्यम निडरता ब्रिटिश शासन ने चुनौती भी दी दी ही। विशेष रूप 1925 रे काकोरी षड्यंत्र में भाग लेने स्वतंत्रता रे वास्ते बिस्मिल समर्पण ने अनगिनत लोगों ने जो अणि संघर्ष में शामिल व्यवहार वास्ते प्रेरित भी किया हा।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। 1927 में वणारी शहादत रे बावजूद स्वतंत्रता री खोज में साहस और बलिदान रे प्रतीक रे रूप में वणारी विरासत आज भी कायम है सा। बिस्मिल रो जीवन भारत री स्वतंत्रता रे लड़वा रे वास्ते अटूट भावना रो उदाहरण है जणी में राष्ट्र इतिहास रो गहरो प्रभाव भी है सा। और आज अणारे बलिदान ने अपी याद कर रहा सा और आज अणारे जन्मदिवस पर अपे अणा ने नमन कर रहा सा।
0: हाँ सा। तो देखो सा अबे आपा अपने किसान भाई ने जाता एक राजस्थानी गीत और होने दसा।
1: बिल्कुल होने दसा।

कार्यक्रम खेती और घर। श्रोताओं, हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। समय है फिल्मी गीतों के माध्यम से आपके मनोरंजन का।

कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में बटवारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हसन कमाल ने इस गीत को लिखा था, संगीत लक्ष्मीकांत पेरेलाल का था। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में प्रेम रोग फिल्म का गाना सुनते हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: तुम कम सिन हो।
1: आजाद, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी।

आई मिलन की बेला, ये था फिल्म का नाम। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। श्रोताओं, फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है लव स्टोरी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचारों के लिए आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के

0: तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि यह उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के

0: विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी, यही मौत है यही जिंदगानी। आवाज़ जगजीत सिंह की थी। सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा।

0: अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

ये अंतिम आवाज थी बेगम अख्तर की। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यही खत्म होता है। आप आकाशवाणी उदयपुर के साथ हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए फिर से चलें संगीत की महफिल में, लेकिन इस बार फिल्म संगीत की महफिल में।

किशोर कुमार की आवाज़ है। फिल्म का नाम है प्रियतनम प्रियतमा, राजेश रोशन का संगीत और योगेश का लिखा हुआ गीत।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। श्रोताओं, रात का ये जो समय होता है जब धीरे धीरे खामोशी बढ़ती जाती है, ऐसे में हिंदी सिने गीत जो होते हैं वो बड़े सुहाते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे गीत जिनमें किसी की याद हो, किसी के लिए प्रीत हो।

तेरी याद तेरा नाम और नहीं कुछ काम हम दीवानों को। जब भी हम फिल्म सनी का जिक्र करते हैं तो वो गज़ल ज़रूर से याद आती है कि और क्या अहदे वफा होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ गीत हैं जो दिल को सुहाते हैं। उन्हीं में से एक ये गाना

हीरो, ये था फिल्म का नाम जिसका गाना अभी आपने सुना। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी ने इसे लिखा। हीरो फिल्म के भी तमाम गाने बड़े सुनने लायक हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें कभी कभी ही सुना जाता है। उन्हीं में से एक ये था, मोहब्बत ये मोहब्बत। और आइए अब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति को।

ये गाना था फिल्म नगीना से, आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति की थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत। श्रोताओं, पहले ये बीन का लहरा या बीन की धुन कभी रेडियो पर बजा करती थी किसी ज़माने में, तो लोग रेडियो का या तो वॉल्यूम कम कर देते थे या रेडियो बंद कर देते थे, उन्हें लगता था कि इस धुन को सुनकर सांप आएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं, सांप के कान नहीं होते। जब भी बीन उसके सामने बजाई जाती है तो वो बीन के इशारों पर नाचता है। फिलहाल हम फिल्म संगीत आपको सुनवा रहे हैं, तो ये जो 9:30 से रात्रि 10 बजे तक का चंक है उसका आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद रात्रि 10 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक का एक और टुकड़ा हमने रखा है फिल्म म्यूज़िक के लिए।

अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ें थी। ये फिल्म थी नागमणि। अनु मलिक का संगीत और संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत मेरा लौंग वाचा। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये हिस्सा अब यहीं समाप्त होता है। आप हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ। अब एक और सिलसिला शुरू होगा फिल्मी गीतों का, जहां पर होंगे कुछ और सुमधुर सदाबहार गीत। ये सिलसिला चलेगा ठीक 11 बजे तक रात्रि के। शुरुआत करते हैं इस मधुर गीत से।

रात के सन्नाटे में संगीत के रसिक जब इस गीत को सुनते हैं तो खो से जाते हैं, और ये गीत जब फेड आउट होता है यानी ख़त्म होता है तो आँखों की कोरें गीली रहती हैं प्रीत में पड़े लोगों की। ये गाना फिल्म रेशमा और शेरा का अमर गीत लता मंगेशकर को जब तक याद किया जाएगा इस गीत का जिक्र बार बार आएगा। जयदेव का संगीत और बाल कवि बैरागी की लिखी ये कविता, तू चंदा मैं चांदनी।

माझी नैया ढूंढे किनारा। जीवन के दर्शन को समझाता हुआ ये गीत फिल्माया भी उतने ही सुंदरता से है। फिल्म उपहार का ये गीत और साथ ही उपहार के सारे गाने बड़े मधुर। एक गीत ऐसा है उपहार फिल्म में जो रुला देता है, वो गाना है सुनी रे सजरिया सुनी रे नगरिया। लता मंगेशकर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में गाया ये गाना, माझी नैया गाया मुकेश ने। इस फिल्म के सभी गीतों को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे आनंद बख्शी ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी उदयपुर से आप तक पहुंच रहा है।

बड़े मनमोहक पियानो म्यूजिक वाले इस गाने को हमने लिया था फिल्म लव इन टोक्यो से। लता मंगेशकर का स्वर, शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नज़ारा हो तो ऐसा हो। इन सदाबहार गानों की बात ही अलग है, जितनी बार सुने कम लगता है।

मोहम्मद रफ़ी की गायकी को जितने अंदाज में सुना जाए उतना कम। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, और ऐसी बेखुद आवाज की क्या कहें। फिल्म काला पानी से इस गीत को हमने लिया। एस टी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी की कलम से निकला हुआ ये नगमा, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए।

ये हल्का फुल्का सा गाना था फिल्म कलयुग की रामायण से। इसे गाया लता मंगेशकर ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, और इस गीत को लिखा वर्मा मलिक ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से।

कल आज और कल, ये था फिल्म का नाम। आवाज़ किशोर कुमार की थी, शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत। ये उस दौर का गीत है जब योडलिंग को दुनिया में पहली बार पहचाना गया था, क्योंकि ये भारतीय संगीत का हिस्सा नहीं थी और योडलिंग कर पाते थे सिर्फ किशोर कुमार, जो आखिरी में सुनाई देती है इस गीत के, भंवरे की गुंजन है मेरा दिल।

जानेसार अख्तर का लिखा हुआ ये गीत, ख्वाब बनकर कोई आएगा तो नींद आएगी, हमने लिया फिल्म रजिया सुल्तान से। आवाज़ लता मंगेशकर की और मौसिकी खयाम की थी।

ये एक नायाब संगीत जिसे दिया उषा खन्ना ने, मोहम्मद रफ़ी की ऐसी आवाज़ जो बरसों बरस सुनी जाएगी इस फिल्म के लिए। ये फिल्म पता नहीं कितनी मकबूल हुई, लेकिन ये गाना हमेशा सुना जाता रहेगा। फिल्म थी आप तो ऐसे न थे, इसे लिखा निदा फाजली ने।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

आवाज़ें थी आशा भोसले और बप्पी लाहिरी की। बप्पी लाहिरी का ही ये संगीत था, अनजान का लिखा हुआ गीत, और फिल्म थी नमक हलाल। रात बाकी है, बस थोड़ी सी बात और बाकी है।

मोहम्मद रफ़ी की ये आवाज़ है, इसे हमने लिया फिल्म राजा और रंग से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का गीत। श्रोताओं, यह है फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति।

मोहम्मद रफ़ी की ये आवाज़ है, इसे हमने लिया फिल्म राजा और रंग से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का गीत। श्रोताओं, यह है फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति।

फिल्म राजा और रंग के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। पहले समाचार हिंदी में होंगे और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के

0: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Vikasit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life, including education, health and employment.
3: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Vikasit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they are doing. Inclusive Human Development covers all the 4 stages of life, from childhood to youth to working life to old age. A skilled population

इस किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारे आज के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:53 पर प्रातःकालीन प्रसारणों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।